और आप नाराज खुदा कहरे करे दोस्तों, जरा ठहर तुझे समझाऊं। पूजा का फूल है, मूफी का नाम है, नाइटिंगेल लता जी का सॉन्ग है।

करारे साहे जय मुखर्जी विजयंती माला का ये फिल्म इशारा जोंग का और ये नाम है। और दोस्तों ये सब पुराना पुराना गीत कितना अच्छा लगता ना, पुराना गीत कितना अच्छा लगता। हम हैं जॉनी नंबर वन और जॉनी नंबर वन जो है तो वो जरूर कुछ शायर के गीत आप लोग को सुनाएंगे। तो आओ सुना जाए, मैं शायर नहीं तो और क्या हूँ। फिल्म के नाम है बॉबी का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों मैं भी शायर नहीं हूं, लेकिन हम कुछ आपको शायर के गीत को सुनाते हैं। और शायर के बाद हम क्या सुनाएंगे, हम चलते हैं, ये दुआ है मेरा रब से दुआ है दोस्तों, और जो रब से दुआ करेंगे तो आपको जरूर रब आपका दुआ जो है वो कबूल जरूर करेगी। तो फिल्म के नाम है सपना साजन की अलका की और कुमार शानू का ये सॉन्ग है।

कोई भी दोस्ती पसंद आए हमारे दोस्तों, तो बात क्या है, कैसे है, आपको हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारे दोस्तों आज प्यार के मूड में फिर आ गए हैं, और प्यार के मूड में आए हैं तो प्यार तो करना चाहिए। तो हम चलते हैं बाला सुब्रमण्यम की ओर। ये भी बहुत लवली गीत गाया है दोस्तों, आओ एक और सुना जाए, और वो है बाला सुब्रमण्यम के आवाज में।

बाबुल सुब्रमण्यन के बाद तो हम चलते हैं और एक गीत के ओर, वो भी आज प्यार के मूड में है। कुमार शानू के ये गीत है, आओ प्यार करे, आप भी प्यार करो ना।

0: और चांद से पर्दा कीजिए कोई चुरा न ले और चेहरे के नूर हमारे ये। तो एक और हो जाए बाला सुब्रमण्यम का ओल्ड सॉन्ग
1: बहुत प्यार
0: और मैं भी तुमको बहुत प्यार करते हैं हम
1: बहुत

और बहुत प्यार तो करते हैं और सदा करते ही रहेंगे, ये हमारा वादा है। बहुत प्यार करेंगे और करते ही रहेंगे जब लेक सांसों में दम रहेगा। दोस्तों तो हम अगला गीत की ओर जाते हैं, अभी सांस लेने की फुर्सत तो नहीं है। अलका याग्निक सोनू निगम का ये सॉन्ग है।

और कहते हैं अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है और इसलिए कि तुम मेरी बाहों में हो तो आप कितनी महान हैं कि सांस लेने की भी हमें फुर्सत नहीं है क्योंकि तुम मेरी यादों में नहीं मेरी बाहों में हो। दोस्तों हम चलते हैं नाइटिंगेल और लता मंगेशकर और परमा श्री मोहम्मद रफी के एक मस्त भरी प्यार भरी गीत आतिश वेलन हील अवलीचे फन 1957 और फिल्म के नाम बा भाभी और ये गीत हम चलाते हैं आप लोग सुनो।

छुपा कर मेरी आंखों को, तो पूछे कौन है और बता दीजिए नाना जी लता जी और प्रमाण श्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ सॉन्ग है। और हम चलते हैं कभी कभी जब प्यार हो जाता है तो लोग खोजते हैं, क्या खोजते हैं, लोग खोजते हैं कि हम कहाँ अपना प्यार को ढूंढूं और प्यार में लोग क्या क्या देखते हैं। और ये गीत है रब को भी लोग देख देते हैं प्यार में हमारे यारों।

और दोस्तों हम चलते हैं एक ओल्ड इन गोल का पुराना गीत है, वो है फिल्म का नाम है मेरे ख्याल से ये कुछ और फिल्म का नाम है तुम अकेले तो कभी बाग में मत जाया कर आओ प्यार करिए। मूवी का नाम है आओ प्यार करे, ये रजत खन्ना का ये एक फिल्म है और ये गीत आओ सुना जाए मिलकर।

और ये सब गीत से, और ये सब गीत से आदमी लोग के गर्मी लग जाता है। प्यार के गीत है और प्यार के मूड में आज हैं, तो हम और अगला गीत की ओर जाते हैं। और वो है, जब किसी को जब आप प्यार करते हैं तो आपको क्या दिखना, क्या दिखते हैं आपकी आंखों के आगे, आपके नज़र के आगे क्या आ जाते हैं?

रब ने जोड़ी जरूर बना देगी। हाँ प्यार है और प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं है दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

अरे दोस्तों, आज आप लोग को हम ओनली लवली सॉन्ग सुनाएंगे। हम चलते हैं जग घुमाए गब घुमाए के ओर, हम चलते हैं एक प्यार भरी लवली सॉन्ग, राहत फतेह अली खान।

0: और जग घूमता जैसा तुम्हारा और क्या क्या है दोस्तों, तो हम आची फिर से और प्यार के मूड में हैं। चलते हैं तेरी मेरी क्या है, चला जाए।
1: शादी हो रही है मेरी, हो सके तो भूल जाना।
2: ऐसे कैसे भूल जाऊं तुम्हें, प्यार छोटा नहीं है।

हरी भरी और मुस्कुराने की बात करते हो तो कैसे होगा हमारे यारों। और दोस्तों तो एक गीत हम और आप लोग को, ये है प्यार भरी नगमों की बहार, प्रोग्राम ख्वाबों का तू है और क्या।

तू है रे गुजर रे तू दोस्तों हम प्यार के मूड में आज हम हैं ते ही तो यारो हम चलते हैं एक गीत की ओर।

मेरा एक सपना है, क्या आपके भी सपना होगा? तो जो सपना है तो कभी कभी पूरा हो जाता है और कभी कभी और बहुत अफसोस है कि नहीं पूरा होता है। मरे एक छोटू के लिए है।

जिक्र होता है जब कयामत का, मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी माई लव से आप सुनेंगे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे शीघ्र होता है जब कयामत का। अदवाई थी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी माइल ऑफ से हमने पेश किए हैं। रुक जा ऐ हवा लता जी आपको सुनाने वाले हैं ये सुंदर सा गीत आप सभी के वास्ते पेश करते हैं फ्रॉम द मूवी शागिर्द से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे एनर्जी से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। एक बहुत सा सुंदर सॉन्ग हम चुनकर रखे हैं आप सभी के वास्ते, और लता जी आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है, ज़िंदगी सब्र करना सिखाती है और सब्र जीना सिखाता है।

लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए। जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, जिंदगी तो हल्की फूकी सी है, सरा बोझ तो ख्वाहिशों का है। मैंने देखा तूने देखा फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में किशोर डा आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे मैंने देखा तूने देखा, लता जी के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। फ्रॉम द मूवी दुश्मन से हमने पेश किए हैं। कोशिश करना कि जिंदगी में वो शख्स आपको हमेशा मुस्कुराता हुआ मिले, जो आपको रोज आईने में दिखाई देता है। कान में झुमका, चाल में झुमका, फ्रॉम द मूवी सावन भादो से हम पेश करते हैं। मोहम्मद रफी आपको सुनाने वाले हैं।

अभी आप सुन रहे थे कान में झुमका, जाल में ठुमका, लगे पशासी झटके। और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं सर आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी, और वो ये है, इंसान तो हर जगह पैदा होते हैं मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। कहाँ चल दिए इधर तो आओ, फ्रॉम द मूवी झुक गया आसमां से हम पेश करते हैं।

0: कहाँ चल दिए।
1: अभी आप सुन रहे थे झुक गया आसमां से, कहाँ चल दिए, इधर तो आओ मेरे दिल को ना ठुकराओ, बोल सितमगर मान भी जाओ। मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे। हाँ मैंने भी प्यार किया मुकेश जी के साथ में सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले हैं। लोग हमारी कदर उस वक्त नहीं करते जब हम अकेले हो, बल्कि उस वक्त करते हैं जब वो अकेले हो।

फ्रॉम द मूवी बुन जो बन गए मोती, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफी जी और सुमन कल्याणपुर जी आपको सुनाने वाले थे। प्रोग्राम को हम और आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, और मंजिल इंसान के हौसले आजमाती है, मंजिल इंसान की हौसले आजमाती है। किसी भी बात से हिम्मत ना हारना मेरे दोस्त, ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। आप यहाँ आए किस लिए, किशोर दा आपको सुनाने वाले हैं साथ में आशा जी के साथ।

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: बोलो।
1: आज लेना एक वादा है।
0: क्या?
1: आजा आजा शादी का इरादा है।
0: क्या?
1: शादी का इरादा है।
0: शादी
1: का इरादा है।
0: शादी ना बाबा ना।
1: मगर क्यों?
0: शादी तो बर्बादी है।
1: क्या कहती हो?
0: हो जाती आजादी है।
1: नहीं नहीं
0: बाबा
1: सुनो तो
0: ना
1: सुनो तो सुनो तो आए इसलिए आपने बुलाया इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए पहले जरा आप मुस्कुराइए पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: अभी आप सुन रहे थे आप यहाँ आए किस लिए, आशा जी के साथ में किशोर दा आपको सुनाने वाले थे। सुंजा आ ठंडी हवा, थमजा ए काली घटा आप सुनेंगे। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ मजबूत रिश्ते बड़ी खामोशी से बिखर जाते हैं, कुछ लोग खुद टूट जाते हैं दूसरों की खुशी के लिए।

किशोरदा और लता जी आपको सुनाने वाले थे सुंजा आ ठंडी हवा फ्रॉम द मूवी हाथी मेरे साथी से हमने पेश किए हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो। मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गा दीवाने झूम के, फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूम के, रात की जुल्फे झूम के, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है, दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम है दोनों यहाँ। फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमाइती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटे झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटे भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे, को सुनाने वाले थे, को सुनाने वाले थे।

हमारे सभी अमृतवाणी प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार।

मैं आपका गोपाल परदेसी बाबा आपको शरीर के बारे में कुछ बतलाने जा रहा हूं। हम किसान कुछ अगर बोना चाहते हैं तो हमको एक खेत की जरूरत है सज्जनों, जिसमें उपज होती है वो खेत ही है। और ये मानव का शरीर एक खेत का स्वरूप है सज्जनों, इसमें पाप और पुण्य रूपी दो बीज हैं, मन वचन और कर्म, तीन इसके सहयोगी किसान है। मित्रों ध्यान देते रहना, आप अकेले का ये खेत नहीं है, ये मन वचन और कर्म तीनों का खेत है। इसमें दो तरह के बीज हैं, पाप और पुण्य। जैसा किसान बोएगा वैसा ही मिलेगा। मित्रों शरीर के शुद्धिकरण शुद्ध खान पान और वातावरण से ही हो सकता है, वरना तो ये शरीर शुद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध नहीं हो पाएगा। मित्रों काफी मल इसमें 24 घंटे भरा रहता है और पेशाब भी भरा रहता है। प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान देते रहना हम आपसे क्या बतला रहे हैं, ये हकीकत बतला रहा हूं, इस पर आप जरूर मनन करें। तो 24 घंटे भरा रहता है मल और मूत्र इस शरीर में, तो मल मूत्र का ये शरीर भंडार है। वैसे देखा जाए तो ये केवल मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री यानी फैब्रिक है, ये तो पता है आपको ना। चाहे आप भारत के हल्दीराम होलैंड का अल्बर्ट हैन दुकान या सूरीनाम का कोम्बे मार्क से खरीद कर खा लें, अच्छे अच्छे खा लें, कुछ भी खा लें, खाने तक ठीक है, और थोड़े समय के बाद वो मल बन जाता है। चाहे आप गंगा जल पी लें, चाहे जमुना जल पी लें, चाहे आप ब्रॉन वाटर पी लें, या कोई भी तीर्थ स्थान का जल पी लें, पीने तक वो तीर्थ जल है, फिर वो मूत्र बन जाता है, पेशाब बन जाता है। तो मल और मूत्र बनाने की फैक्ट्री के ऊपर हम अकड़ रहे हैं, मल मूत्र की फैक्ट्री को लेकर आंखें टेढ़ी कर लेते हैं। मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इतना हूं, इत्यादि इत्यादि कहते रहते हम। और है तुम क्या, क्या चीज हो, मल मूत्र बनाने की फैक्ट्री हो और कुछ नहीं हो मित्रों, और उसी पर आप अकड़ रहे हो।

तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, जब आप अहंकार से चल रहे हो और दिखा रहे हो अपना अभिमान कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं इतना हूं, मैं क्या नहीं है आप, हाँ और क्या नहीं है आप, आप तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री हो, फैब्रिक हो। तो प्रेमियों, जब ये मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है और उस पर इतना नाज कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अहम कर रहे हैं, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, फरस्तांदख नहीं है, ये मानवता नहीं है मित्रों। इसको हम कृपा का शरीर माने और ये देखें कि ये भोग के लिए नहीं है, ये परमात्मा के मिलन के लिए है मित्रों। मगर हम तो उल्टा करते हैं ना, शरीर में पवित्रता भी बड़ी भारी है मित्रों, क्योंकि इसके अंदर आत्मा बड़ी परम पवित्र है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा का स्वरूप मेरे ही रूप है, क्योंकि न ये कभी अपवित्र होती है, न इसको छेदने वाला कोई शस्त्र निर्माण किया गया है, और ना कोई ऐसी हवा या अग्नि उत्पन्न हुई जो इसे सुखा या जला सके। अर्थात ये आत्मा सदा अजर अमर है,

मित्रों, आत्मा इस शरीर में मौजूद है और आत्मा के सहयोगी चित्त और चित्त के बाद में मन है, बुद्धि है, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, पर मुख्य इसमें आत्मा का रूप है मित्रों। और उस आत्मा से हम परमात्मा के लिए रोए, पुकारे, स्मरण करें, प्यार करें। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, परमात्मा अत्यंत अत्यंत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, मगर आपको सच्चे मन से भगवान को प्रेम प्यार स्मरण करना चाहिए। अब ये हमारा खेत तैयार हो गया है, अब हम विचार करें कि करें क्या इस खेत में। मित्रों, करें क्या इस खेत में। मन, कर्म और वचन तीन किसान है। पहले तो हमें वो करना है जो हमारे साथ चले, जो साथ नहीं चले उसमें अपना जीवन निकाल दिया तो मानव के जीवन का अस्तित्व यानी मतलब नष्ट हो गया, कुछ नहीं मिला। तो विचार करें कि हमारे साथ क्या क्या चीजें चलने वाली है, उनको हम तैयार कर लें। मित्रों, इसी संदर्भ में एक बात याद आया मुझे। एक नगरी में 6 साल के लिए राजा बनाए जाते थे और 6 साल के बाद वहां के जितने भी नगरवासी, वहां के जितने भी मुख्य पात्र होते थे, उस राजा को नौका में बैठाकर नदी के पार जंगल में जहां हिंसक पशु रहते थे छोड़ देते थे। ध्यान कीजिए प्यारे प्यारे मित्रों, ये नियम था वहां का। तो एक व्यक्ति का जब राजा बनने का नंबर आया तो उसने विचार किया कि हर राजा के साथ 6 साल के बाद ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसा। उसने अपने प्रधानमंत्री को बुलाया और कहा कि हे मंत्री, क्या ये कानून रद्द नहीं यानी बदल या निकाल नहीं जा सकता। मंत्री बोला, नहीं सरकार, नहीं, ये रद्द नहीं हो सकता। तो कोई उपाय तो हो सकता है। बोले, हाँ ये तो हो सकता है, अगर आप विचार करें तो। उपाय क्या है? अच्छे योग्य मंत्रियों की उसने सलाह ली। मित्रों, उन्होंने बताया, हाँ महाराज, इसका उपाय है, प्रजा को आप परम सुख दीजिए, कोई कमी मत कीजिए और इस नदी के उस पार 3-4 विश्वास पात्र नौकर रख दो और यहां से राज्य सरकार से कुछ पैसा भेजते रहो, कुछ सामान भेजते रहो और वहां पर एक नगर का निर्माण कराओ। बोले, ठीक है। मित्रों, ऐसा होता गया, समाचार मिलते रहे कि नगर बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है नगर। वहां हाथी भी खरीद लिए गए हैं, घोड़े भी, ऊंट भी खरीद लिए, पालकी भी, घोड़े वहां सब मौजूद है, प्रजा भी काफी हो गए हैं। मित्रों, उतने में 5 वर्ष और 11 महीने व्यतीत हो गए, एक महीना शेष यानी बाकी रह गया। तो मित्रों, राजा ने एक महीने के लिए पूरी प्रजा को आमंत्रण दे दिया कि हमारे यहां राज्य की ओर से भोजन होगा, राज्य की ओर से सत्संग सुनने वालों को सत्संग सुनाया जाएगा, भजन कीर्तन वालों के लिए भजन कीर्तन का प्रबंध किया जाएगा। इस तरह उस राजा ने सब इंतजाम कर दिए और अब शेष यानी बाकी 1 दिन रह गया। परंतु राजा परम प्रसन्न, बहुत खुश, नाचे कूदे, सबसे गले मिले, नौका में बैठा दिया गया उस राजा को। मित्रों, वो नौका में बैठा आनंद ले रहा है। लोगों ने कहा,
कि हैं इसका दिमाग चल गया है, यानी पागल हो गया है ससुरा। मित्रों, वो पागल हो गया या नहीं, इसके बारे में हम आपको आने वाला अमृतवाणी में बतलाएंगे। आपके शब्द कितने ही महान हो, लेकिन आप अपने कर्मों के द्वारा ही पहचाने जाएंगे। मित्रों, आप चाहे जितने लंबे लंबे बात करें, आपका स्वभाव, आपका आचरण ही आपका पहचान बनाएगा। मित्रों, और दुनिया में फरिश्ता कोई नहीं है, इंसानी ही बन के रहना, इंसान ही रहो। मैं बार बार ये भी कहता हूं कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, मगर मुझे उनसे मिलवाते रहना जो आपको मिल चुके हैं। मित्रों, बुरा किसी का मत करो, बुरा बुरे का फल आगे तेरे आएगा, आज नहीं तो कल। आप सभी को प्यार भरा राम राम, सत श्री अकाल, आदाब और नमस्कार। मिलेंगे फिर अगर रहा जी।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ।

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलीग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुनने वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा की आवाज़ में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लई खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सीतू, बीबी साहिबा रहीमक्स जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देन हाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देन हाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जाकर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अर्नहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अर्नहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन के ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज़ में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

जय किशोरी जी के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। मेरे श्याम तेरा नाम ही काफ़ी है मेरी हर मुस्कान के लिए। यहाँ तक जो सुबह का भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, मैं आपका सेवक संजय आशा यही रखता हूँ कि कुछ न कुछ आपको जरूर अच्छा लगे होंगे। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, रूह कुछ बदल दिया जाएगा। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत है, दिवस प्रस्तुत है, दिवस प्रस्तुत है।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधा दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए हैं, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

24 घंटा आपके साथ जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेगा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित हो करके कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एमफी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

जोनी मेरा नाम फिल्म जो 1970 में बनाया गया, एक फिल्म जिसमें जाकर के हेमा मालिनी, देवानंद और प्राण ने अपने कला से प्रदर्शन किया। क्राइम एक्शन फिल्म। जिसमें देवानंद और प्राण दो भाई जो बिछड़ जाते हैं, ओ बाबुल प्यारे, लता मंगेशकर जी की आवाज में, अ ग्रेट सॉन्ग ऑफ द फिल्म जॉनी मेरा नाम 1970। सुन वालों, मैं हूं संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं

करते रहे और कहा जाता है कि यदि प्लान आ काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, अभी 25 और भी लेटर बचे हुए हैं, ट्राई करते रहना। सुनने वालों, और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ मैं आपके साथ जुड़े रहेंगे और बॉलीवुड सॉन्ग्स में से निकाला गया जो अगला गीत हम अपने प्लेयर पे चुन करके रखे हुए हैं,

संगम फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत लता मंगेशकर और मुकेश जी के आवाज में। फिल्म में एक्टिंग किया है राज कपूर और विजयंती माला ने।

जा उदास, के झड़ोके में तुमको बिठाएंगे। और ये झड़ोके है क्या, यानी कि दिल से और वही खिड़की। और वहां बैठाकर फिल्म ब्रह्मचारी से निकाला गया, जिसमें काम किया है शमी कपूर।

दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती। दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है, जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है। लिखने वाले भी क्या खूब लिखे हैं, कि दुनिया वो किताब है जो कभी पढ़ी नहीं जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है।

अपना फिल्म से निकाला गया 1971 से। कई दर्द भरी गीत भी चला दिया जाता है और ये बात हम जाने कि गलती से हम वो ना कर बैठे जो और कर चुके हैं, क्योंकि बाद में ऐसा दर्द भरी गीतों को सुनने में और समझने में धीरे धीरे अलग सा और शौक हो जाता है। और कहीं आपको सॉरी बोलने भी पड़े तो उसमें पीछे हटना नहीं, क्योंकि हम इस बात को भी जानते हैं कि खोए हुए चीजें अक्सर खूबसूरत लगने लगती है जैसे बीते हुए वक्त। बीते हुए वक्त और बीता हुआ बचपन।

उतर वो जीत कर आएंगे। फिल्म गैम्बलर से निकाला गया ये सुंदर सा गीत 1971 किशोर कुमार जी के आवाज में, एक फिल्म जिसमें देवानंद ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। और ये शब्द भी कितना गंभीरता होता है ना, कहा जाता है कि शब्द का भी तापमान होता है, कभी गर्म भी हो जाता है शब्दों, और ये सुकून भी देते हैं। और जब ज्यादा गर्म भी हो जाए शब्दों ना, तो ये जला भी देते हैं। तो वही शब्द प्रयोग करो

जहां कभी गर्म ना होवे। कभी जला भी ना दे।

प्यार का गम माइलो फिल्म से निकाला गया 1970, जिसमें शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। ब्रोकन हार्ट सॉन्ग

वक्त करता जो वफा आप हमारे होते, दिल ने पुकारा फिल्म से निकाला गया 1967 से। और मुकेश जी की आवाज में हम सब इस गीत को सुने। और कहीं ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स के साथ इस फिल्म में शशि कपूर ने अपना कला से प्रदर्शन दिया।

ये मत कहना कि संजय ने कहा था नहीं, क्योंकि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना जीवन में एक बात हमेशा याद रखना किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, किसी अच्छे के चक्कर में किसी सच्चे को मत खोना।

तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। ये सुंदर सा ब्रोकन हार्ट सॉन्ग जो निकाला गया फिल्म पूरब और पश्चिम से, जिसमें काम किए हैं इस फिल्म में मनोज कुमार और शायरा बानू ने अपना कला से प्रदर्शन दिए। पूरब पश्चिम से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और दोस्तों ये भी कहना चाहूंगा कि जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग को खास होता है। जो इंसान दिल का साफ होता है वो कम ही लोग का खास होता है। दोस्तों सुनने वालों, कभी कुछ गड़बड़ भी हो गया

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर अनतिलक उक्त बुलाइस्त्रफिया इंटरनेट के लहर द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, एक बार फिर आप सभी को स्वागतम है। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड सोसलोबिलोबी एंड ब्लेसिंग्स, जहाँ पर भी जिस हाल में हो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। ओ हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो। मैं ढील फील लश्तर प्लेजीर के साथ, तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसके बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो हो सकता है चमत्कार पे चमत्कार भी हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। स्टेडाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो अपमात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यार उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी बेलटेनस कंतोर यूरोफनमान अख्तोत फ्रेरा फनीख तोत फेफ कंतोर का तार का नंबर 0736206740 और स्टूडियो का तार का नंबर है 0736206770 पर आप तार करें। जो भी रेडियो का काम हो देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बेंतिनो खिलत फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेम्बर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है, और ये बात आप मत भूलना कि आप एक हिंदुस्तानी संस्था एक हिंदुस्तानी रेडियो स्टेशन को मदद कर रहे हैं। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेम्बर बने और को भी बनाए। बेलो अप 0736206770 तक इसके बारे में। एकदम बढ़ते हैं प्रोग्राम के तरफ यारो। अवारा के मुताबिक कुछ नए नए सुपर सॉन्ग्स आप सुनेंगे फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। एक अति सुंदर बयान है, मेरा दिल तेरा होने लगा। महान गायक द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू जी साथ दे रही है ये अति सुंदर बयान में आकांक्षा शर्मा जी, संगीतकार संजीव चतुर्वेदी के साथ पर ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे।

ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाया आप सभी को द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार सानू साथ दे रही थी आकांक्षा शर्मा म्यूजिक और लिरिक्स एंड कंपोजिंग बाय माएस्ट्रो संजीव चतुर्वेदी। अगला बयान दुआ दुआ महान गाने वाली मलकाय हुस्न मलकाय संगीत दिगड़े पलक मुशाल जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कंपोज बाय अनु मलिक और लिखा है शाकिल आजमी जी ने। मिल के सुनते हैं स्पेशल।

Wonderful song, the great music director Anoumalik Kesaj, written by Shakil Azmi. Dua hai dua. The great Palak Mushal. अगला बयान तेरी बन जाना, एक और महान गाने वाली हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा पंजाबी गाना गाती है और कुछ सूफी गाने भी गा चुकी है, द ग्रेट हर्षदीप कौर के ब्यूटीफुल आवाज़ में ये इतनी सुंदर बयान आप सुनेंगे. Music composed and arranged by Rais and Zain Zem, written by Vicky Nagar.

तेरी बन जाना जबरदस्त सॉन्ग द ग्रेट हर्षदीप कौर जी के ब्यूटीफुल आवाज में, संगीतकार राइस जेन सैम के सजाए हुए अति सुंदर बयान। सुंदर सॉन्ग मैं रख चुका हूं प्लेयर में, और इस बार लाते हैं इस जमाने का द किंग ऑफ मेलोडी द ग्रेट सोनू निगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान। आप सुनेंगे कि हसरत भरी नजर, और श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि ये अति सुंदर बयान को कंपोज किया है महान संगीतकार द ग्रेट अनूप जलोटा जी, और लिखा है हर्ष ब्रह्म भट्ट जी, द ग्रेट सोनू निगम।

अति सुंदर बयान देखा तनु फ्रॉम द मूवी मिसिस एंड मिस्टर माही, राजकुमार राव का ये सुपरहिट मूवी महान गायक मोहम्मद फैज के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान को आप श्रोताओं ने सुना, जो आजकल हलचल मचा रहा है हमारे हिंदुस्तान में। एक और जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, मिश फ्राह द आर्टिस्ट मोमेंटेल फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। और बीते हुए हफ्ते हम लोग गया था ये महान रॉक स्टार का एक कॉन्सर्ट हम लोग लाइव देखा आहोई में। Nou, was een concert om nooit te vergeten. Ik was erbij, ik kan er alles over vertellen, maar dhire wacht bikari baar hai. Het is onder bejaan sunan ke jaar hai hai, Jabarjast Gayak, the great Arijit Singh. From the movie Munia, Munna kaha hai tab? Saat de raha hai Sachin Jigar, mahan sangeetkar. Background hai Shruti Dharsma. And the song is written by the great likhak is zamane ka Sachin Jigar. Tainu khabar nahi.

नहीं सुनाया आप सभी को इस जमाने का महान गायक द ग्रेट अरिजीत सिंह जी। धीरे धीरे वक्त भी करीब आ रहा है हमारे प्रिय श्रोताओं, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान अवार्ड विनर सांगरेस द ग्रेट मेघना मिश्र शाह जी का ये बिल्कुल नया सॉन्ग है सच्चियां फ्रॉम द एपे मिलाप।

Satya from the movie Milap EP. बिल्कुल नया सॉन्ग है ये मशहूर गाने वाली का, द ग्रेट मेघना मिश्रा जी, अवार्ड विनिंग संग्रेस, और लिखा है थी सुंदर बयान.

को गौरी सोहेल एंड म्यूजिक कंपोज बाय ऑल्सो गौरी सोहेल। तमारे प्रिय प्रिय सज्जनों, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम, जो समाप्त होने को आया। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूँ कि जिस तौर तरीक से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश हुआ कार्यक्रम आप श्रोताओं को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं आपसे फिर मिलने वाला हूँ। जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूँ, आदत से जो मजबूर हूँ ना।

Bye bye, shwai shwai, love you all from the bottom of my heart. और अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो मिलते हैं आने वाले दिनों में.

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फूल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एनातीलक बदंत हो, जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं अल्स इवेंट और खनिजात और, तो उसके बारे में कमर्शियल बनाकर और जरूर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो की फाइट सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ। आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल हो या खास फरमाई से जरूरी खबरें, अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें आप 9 से 20 तक पर। जो भी रेडियो का काम हो, देंकन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना यारो, चर्चा करते रहना, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो बिनती किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने 3 पर। वारा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते हैं, और जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री ने लास्ट यूज फॉर प्रोग्राम हमेशा की तरह। तो एक जबरदस्त गाने वाली और गाने वाला मैं प्रोग्राम में लेकर आ रहा हूँ। खबूर एम पंजाब और कितने हिट्स अपने नाम पर लिख चुकी है डगड़ेत हर्षदीप कौर जी और महान गायक जावेद अली जी के ब्यूटीफुल आवाजों में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि देखा जाए।

तो हाँ यारो, बुरी गनवा चले से पहले भाग्य रहा तो खोजे फरे, तो जाने हो जाता है, लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, और कभी इंटरनेट तू जाने तो कभी इधर से उधर हो जाए। सजदे किए हैं दो महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, हर्षदीप कौर और जावेद अली।

मशहूर और महान गाने वाले हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का द ग्रेट जावेद अली और हर्षदीप कौर ने मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं, एक लाइव रिकॉर्डिंग था, म्यूजिक बाय अभिजीत वाघानी। अगला बयान एक बिल्कुल नया सॉन्ग है 2024, जबरदस्त गायक म्यूजिक डायरेक्टर रिमेंबर द नेम सरित दत्ता जी के ब्यूटीफुल आवाज में उन्हीं का बनाया हुआ ये धुन और संगीत भी उन्हीं ने दिया है। लिखा है डॉक्टर उमा नवीन मेहता जी ये अति सुंदर बयान को, सुन ले ओ यारा। पिक्चराइज किया गया है नौजवान कलाकार विकी कौशल और तृप्ति दिमरी पर। मिलके सुनते हैं।

जबरदस्त कलाकार इस जमाने का, द ग्रेट सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर सारित दत्ता जी के ब्यूटीफुल आवाज में इतनी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। और जबरदस्त नौजवान कलाकार यार खलीद दौरख ब्रोक इन द म्यूजिक वर्ल्ड फ्रॉम ऑन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। छोटा नौजवान कलाकार और इतना नाम कमा चुका है, मिलियंस व्यूज मिलता है रोजाना ये महान संगीतकार को। मोहम्मद फैज़ की ब्यूटीफुल आवाज में 17 साल का नौजवान गायक अरिस्टा मेहता जी के साथ मिलके अति सुंदर बयान को तैयार किए हैं, तेरी चाह तो से, द गोल्डन एडिशन। Yeah.

0: जबरदस्त गायक इस जमाने का, हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, मोहम्मद फाइज के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना, तेरी चाहतों से। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो, साप्ताहिक प्रोग्राम आप सुन रहे हैं कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। अगला बयान है फ्रॉम द मूवी स्त्री 2 यानी स्त्री 2, एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, गाने वाले पवन सिंह और सिमरन चौधरी के ब्यूटीफुल आवाज में। आई नहीं क्या बात है, म्यूजिक प्रोड्यूस एंड अरेंज बाय सचिन जिगर।
1: वो नहीं आने वाले।

क्या बात है, आई नहीं। फ्रॉम द मूवी 3-2 राजकुमार राव का ये सुपरहिट मूवी विद श्रद्धा कपूर जी, क्या बात है, भयानक जबरदस्त भयानक सॉन्ग आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया। अमिताभ भट्टाचार्य जी का लिखा हुआ ये थी इस सुंदर बयान पवन सिंह और सिमरन चौधरी कोरिस के साथ। म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय मैस्टर सचिन जीगर।

तो यारो कुछ आखिरी शेर से हो जाए ना मेरे आज के हिस्से के कार्यक्रम में। अर्ज किया है कि वो मेरा वहम था कि मेरा हम सफर था, वो तो मेरा वहम था कि वो मेरा हम सफर था, वो चलता तो मेरे साथ था पर किसी और की तलाश में। ये

ये जमीन की फितरत है, हर चीज सोख लेती है। ये तो जमीन की फितरत है यारो, हर चीज को सोख लेती है। वरना इन आंखों से गिरने वाले आंसुओं का भी एक अलग समंदर होता। कभी कभी जिंदगी में ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि गलत क्या है। वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए, या वो सच जो आंखों में आंसू ले आए। मैं तो सच को मानता हूं। मुद्दत से हमें जिनकी आस थी, मुद्दत से हमें जिनकी आस थी, वो मिले पर कुछ यूं मिले ऐ दोस्त, वो मिले पर कुछ यूं मिले ऐ दोस्त। हम नजर उठा उठा कर तरप गए, और वो तो नजर झुका कर गुजर गए। ये भी होता है जिंदगी में यारो। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो, अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। ये भी होता है जिंदगी में यारो। अगला बयान एक बिल्कुल नया सॉन्ग है, ये महान संगीतकार जोड़ी के, डकैत पवनदीप राजन और अरुणिता कंजयलाल का ये बिल्कुल नया सॉन्ग कश्मीर। और देखा जाए तो ये म्यूजिक को सजाया है विशाल चंद्रशेखर जी ने। तो मिल के सुनते हैं ये अति सुंदर नया बयान। कुछ अलग सा सॉन्ग है, अलग स्टाइल की आवाज बनाया है ये दोनों। थोड़ा पहचानने में मुश्किल पड़ गया था मुझे, लेकिन मिल के सुनते हैं अ ग्रेट सॉन्ग।

कश्मीर है ये अति सुंदर बयान का नाम। और महान गाने वाले दो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इस जमाने का द ग्रेट पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल ने मिलकर अति सुंदर बयान को गाए हैं। नेहा शीतोले के लिखा हुआ ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज अंत अरेंज बाय विशाल चंद्रशेखर। ओरे दरिया काफी दिनों बाद कुछ निकाली है ये महान गाने वाली द ग्रेट सोना मोहापात्रा जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। साथ दे रहा है म्यूजिक डायरेक्टर श्री राम संपत जी। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

दरिया मशहूर गाने वाली इस जमाने का हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का डिग्रेट सोना मोहापात्रा और साथ दिया है इस नगमे के संगीतकार राम संपत जी। एक और अति सुंदर बयान कुछ चटक मटक सॉन्ग है और वो सुनाने को जा रहे हैं फ्रॉम द सी ए टॉपर त्रिभुवन मिश्रा। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो राम संपत और गाए हैं ये अति सुंदर बयान को सोना मोहापात्रा और संजीव पुंडीर।

A Topper, beautiful song, सैया illegal, क्या बात है। कभी कभी हो जाता है ना कि सैया भी इलेगल होता है। सुनाया आप सभी को द ग्रेट सोना महापात्रा राम संपत के साज पर। एक जबरदस्त सॉन्ग है सुनाने को जा रहे हैं, नया सॉन्ग फ्रॉम द टाइगर फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, द टाइगर फ्रॉम इंडिया, कुमार सानू जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथ दे रही है पुनीत कृष्णा एक बार फिर राम संपत के साज पर, फ्रॉम द मूवी सी ए टॉपर।

0: सुना भी कुमार सानू जी के बिल्कुल नया सॉन्ग है और साथ दे रही थी पुरीत कृष्ण जी की स्वीकार कर लेना। म्यूजिक अरेंजमेंट कंपोज बाय मैस्त्रो राम संपत। तो प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने के, लेकिन उससे पहले ये आखिरी सॉन्ग आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में और वो सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को इस जमाने का नंबर वन सिंगर फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मैस्त्रो अरिजीत सिंह जी के ब्यूटीफुल आवाज में राम संपत के साज पर फ्रॉम द मूवी लपटा लेडीज आने वाले है। और देखा जाए तो ये अति सुंदर बयान को लिखा है प्रशांत पांडे जी। सजनी इज द सॉन्ग्स नेम, अरिजीत सिंह स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।
1: इंग्लिश बोल के बताएं, कल हम कूलर के मोटर की बाइंडिंग करा के आए। पूरा नहीं है पर हमारे घर में इतना भी बस हम ही बोल पाते हैं। स्कूल के बताएं, आई लव यू।

Sejani is the song's name. और ये थी सुंदर बयान को गाया है महान गायक इस जमाने का द ग्रेट अरिजीत सिंह. म्यूजिक अरेंज एंड प्रोड्यूस बाय मास्टरो राम संपत.

तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, यही तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। यही आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में कुछ कसर नहीं छोड़ा, कोशिश किया जोर तोर से, यह आशा उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप श्रोताओं को जरूर पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले दिनों में मैं फिर मिलते हैं आप सभी से आवाज के जरिए। और जाते जाते तो हमेशा आदत से मजबूर हो गया हूं ना कि कुछ ना कुछ गुनगुना देता हूं दादा हेमंत कुमार के याद में।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। इंटरनेट के लहर द्वारा faunfm.nl पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। एनाटिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स सोशलो बिलेवी एंड ब्लेसिंग्स। जहाँ प्रेमियों जी साल में हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुँचे। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर, या तो आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हो तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो, कमर्शियल हो या तो इश्तिहारे या तो फरमाई से अपमात पर, हम लोग बनाकर बंधु और जितने बार आप चाहेंगे उतनी बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ यारो कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप श्रोताओं को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल tijdens kantooruren van maandag tot vrijdag vanaf 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Dafter Qatar kan nummer 070-65-22-47. En Studio Qatar kan nummer 070-362-2077. Voor jou bij Radio Kakamo, denk aan Fahun Hindustani Radio. Bent u nog geen lid van Fahun Hindustani Radio, to guzaris binti nibedan kiya ja raha hai ki aap bhi jald se jald Fahun Hindustani Radio ka member bane aur ho sake to auron ko bhi banaye. Sabhi jankari 07-365-2047 par aap samparat kare. इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना हम लोगों के बारे में। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वादा के मुताबिक लेकर चलते हैं हमारे दूसरा भाग सरनामी संगीत का, और वो हमेशा की तरह कुछ इंडियन पॉप म्यूजिक होते हैं। तो कुछ पुराने जमाने के कलाकारों को मैं सेलेक्ट किया हूँ आज का इस हसीन प्रोग्राम में, और ला रहे हैं आप श्रोताओं की सेवा में सुरीनाम देश हॉलैंड देश का महान गायक और संगीतकार, नाटक लेखक, नाटक यानी टोनील अख्तर, उस्तादों का उस्ताद मास्टरो गुरुदत्त कल्ला सिंह। हम लोगों के देश के बारे में सुनाते हैं ओम किपफेल फंत क्रेक एंड वॉट एंड वॉइस द ग्रेट गुरुदत्त जी। अरे बजना यार।

शाबाश जबरदस्त गायक द ग्रेट म्यूजिशियन सिंगर और हमारे स्टोरी राइटर और टोनील एक्टर माएस्ट्रो गुरुदत्त कल्ला सिंह कभी जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का जो यार एंड 50, 60, 70 में बहुत ही मशहूर था महान गायक जिस पे हमें नाम से गर्व है द ग्रेट सोनी इंदलाल लाइव रिकॉर्डिंग विथ इंडियन ऑर्केस्ट्रा मेरी कहानी भूलने वाले।

सुरीनाम देश का जबरदस्त संगीतकार गायक लेखक डिगड़े सुकिया का। अगला बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक मशहूर गाने वाली हमारे सुरीनाम देश का अडियार सेस्टिक हिल्दा कान्हाई लाइव रिकॉर्डिंग विद इंडियन ऑर्केस्ट्रा।

शाबाश मशहूर गाने वाली सुरीनाम देश का एडीआर एंड 50 60 70 द ग्रेट हिल्डा कन्हाई विद द इंडियन ऑर्केस्ट्रा। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। अब सुनाने वाला है जबरदस्त गायक हमारे सुरीनाम देश का वायलिन राम नारायण शिवराम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर मेटली आप सुनेंगे, सोचा था प्यार और डम डम दीगा दीगा, एक ऑर्केस्ट्रा जो तैयार किया गया था ये अति सुंदर शो देने के लिए, लीड बाय मैस्ट्रो रियाज अहमद अली विथ हिज यादगार ऑर्केस्ट्रा ओपनाम 2012। मिलके सुनते हैं द ग्रेट राम नारायण शिव राम। क्या बात है।

शाबाश, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनाया आप सभी को वेलन राम नारायण शिवराम जी, यादगार ऑर्केस्ट्रा सुरीनाम देश का, अंडर लीडिंग फन रियाज अहमद अली जी। तो यारो वक्त हो गया है ना कुछ शेर्स हो जाए हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है यारो, मेरे खून में उबल वो आज भी खानदानी है, मेरे खून में उबल वो आज भी खानदानी है यारो। दुनिया हमारे शौक की नहीं, दुनिया हमारे शौक की नहीं, हमारे तेवर की दीवानी है। क्या बात है भाइयों, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे यारो, तेवर तो हम वक्त आने पर दिखाएंगे, तुम प्यार कर लो हम उस पे आपने, तुम प्यार कर लो हम उस पे अपने आंखों से हुकूमत कराएंगे। ये बात है, मेरे नाम पे उसकी आंखों में आंसू, मेरे नाम पे उसकी आंखों में आंसू, ना कर मजाक ऐ दोस्त, ना कर ऐ मजाक ऐ दोस्त, इस बात पे जान भी हमारी जा सकती है। दिल आने की बात है यारो, अपने बस की बात कहाँ, दिल आने की बात है यारो, अपने बस की बात कहाँ, प्यार अगर हो पत्थर, प्यार अगर हो पत्थर से फिर हीरे की औकात कहाँ। छोड़ो ये बात, मिले जख्म कहाँ कहाँ से मुझे, छोड़ो ये बात कि मिले जख्म कहाँ कहाँ से मुझे, ऐ जिंदगी इतना बता और कितना सफर बाकी है। गुलामी तो सिर्फ तेरे इश्क की थी, गुलामी तो सिर्फ तेरे इश्क की थी, बाकी ये दिल पहले भी नवाब था और आज भी है। सभी कहते हैं कि सपने सोने के बाद देखते हैं, सभी कहते हैं कि सपने सोने के बाद देखते हैं, लेकिन मेरा सपना ऐसा है कि मुझे सोने भी नहीं दे रहे हैं। था कुछ शेयर्स हमारे शेयर्स के चाहने वालों के लिए। आगे के प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने के लिए। प्रोग्राम आगे को बढ़ाते सरनामी इंडियन पॉप सॉन्ग्स आप सुन रहे हैं, और लाते हैं कि महान संगीतकार हमारे सुरीनाम देश हॉलैंडेस का मैस्ट्रो हफीज खान, रहूं कैसे मैं तुझसे निहारे बिना। आप श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि भाई हफीज भी एक जबरदस्त गायक था।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है, शाबाश शाबाश। महान संगीतकार हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश का मैस्ट्रो हफीज खान वाहिद हुसैन के ब्यूटीफुल आवाज में थी सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे सुरिनाम देश हॉलैंड देश को लाते हैं प्रोग्राम में और सुनाता है वो आप सभी को ये सुपर हिट सॉन्ग मुकेश जी का गाया हुआ आवारा हूं।

गायक हमारे सुरीनाम देश हॉलैंड देश का द ग्रेट सेंट राम बरन जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। तो हमारे प्रिय प्रिय साथियों, आज का इस सरनामी संगीत का प्रोग्राम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे और वो सुनाने वाले हैं आप सभी को मशहूर गाने वाली एडियार तख्त अबीदा राम जान और जीवन राम दरस मिलके अति सुंदर बयान को गाए हैं, हर जन्म में तुम्हारा मिलन।

0: आप सभी को जीवन रामदास और नाइटिंगेल फ्रॉम द 80s हॉलैंडेज सुरीनाम देश के द ग्रेट अबीदा रामजन। हमारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आप भी जाइए, कुछ खाइए, कुछ पीजिए, कुछ इस्तेमाल कीजिए। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत। आफ्टर द ब्रेक, क्या बात है।
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

सुरेश वादिकर जी और लता जी ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दनहा शहर से। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये गीत है, हाँ सुनिए, रोना लैला जी, इस तरह से।

सारी दुनिया के वीरां पाओगे जब हम नहीं होंगे, ये तो बात सच है। ऐसा होता है ज़िंदगी में। और हमने ये गीत पेश किए फौन हिंदुस्तानी रेडियो कार्यक्रम में रोना लैला जी की आवाज़ में। तो चलिए रोना लैला जी के बाद हम आपको सुना रहे हैं ये आवाज़, आपके लिए भी एक बहुत जानी पहचानी आवाज़ है, फिल्म फिल्म फिल्म निका, फिल्म निका में से निकाले हैं

वाह क्या बात है, फंसा भी है जमा जमा। सलमा आगा की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ओवर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

दिल ने ये क्या सुन लिया, आंखों आंखों में तूने ये क्या कहा। ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश किए। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, चलिए हम आपको सुनाते हैं ये धमाकेदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

डाकू पे डका डाले तो बड़ा मजा हो, इस शमशाद बेगम की आवाज में आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए शमशाद बेगम जी के बाद हम आपको सुनाते हैं रफी साहब की आवाज़।

0: जले
1: करते हैं प्यार समझ में आया
2: तकरार समझ में आया
1: चली हो कहा देखो इधर हम भी करते हैं प्यार समझ में आया।

0: तो हम भी करते हैं प्यार समझने आया।
1: फिल्म कॉलेज गर्ल निगेती एन एफ इफ्तिखार रफी साहब की आवाज में आपको सुनाएगा यहाँ फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में हमने पेश की। जी हाँ, तो क्या ख्याल है रफ़ी साहब के बाद हम आपको ये सुनाते हैं। हाँ, निगेती द्रीन तख्त एन एफ इफ्तिखार से सीधे चलते हैं द्रीन तख्त। जानी पहचानी गीत है, जानी पहचानी आवाज़ है, जानी पहचानी म्यूजिक डायरेक्टर है, तो सुन लीजिए।

अगर तुम ना होते हमें जीने की चाहत ना होती। एवरग्रीन किशोर कुमार जी और लता जी निगत इंद्रियन तख्त का ये फिल्म है, हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। फिल्म तो टाइटल सॉन्ग है ये है अगर तुम ना होते निगत इंद्रियन तख्त का। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर था, और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर हम आपको ये सुनाते हैं। जी हाँ सुनिए, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी तो नहीं है लेकिन फिर भी है।

क्या बात है, बहुत पुरानी गीत है, उतनी पुरानी भी नहीं है। आपको सुनाया गया फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, हमने पेश की ये शानदार गीत। चलो यहाँ से हम पेश करते हैं, जी हाँ, चलिए आपका स्वागत करते हुए फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम आपको सुनाते हैं ये गीत, जी हाँ, कहाँ गया मेरा गीत, और वो ये है इस तरह से।

0: से तौबा।
1: हाँ वाह क्या बात है, आपने शायद शब्द सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ अगर ये शब्द आप नहीं सुने होंगे तो मुकेश जी जो है वो प्यार करता है लेकिन रफ़ी साहब प्यार के ख़िलाफ़ है। बस यही सवाल और जवाब इन लोगों में था। मुकेश जी प्यार कर रहा था और रफ़ी साहब उसका खिलाफ था। ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चला रहे हैं, ये जी हाँ ये भी एक जानी पहचानी गीत, लंबा चौड़ा गीत है, 6.5 मिनट का, तो सुनिए ये गीत कैसा है।

तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आ है, आप तो ऐसे ना थे, फिल्म का नाम है और हमने पेश की ओवरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत। जी हाँ, अगला गीत है मैती मुकेश, मैती मुकेश द हार्ट ट्रब ऑफ मिलियंस।

फिल्म मधुमिती मधुमती में से निकाले हैं ये शानदार गीत मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं लता जी के साथ ये प्यारा द्वैत और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ, जी बस दिल थाम के बैठिए और ये गीत से लुत्फ़ उठाइए, इस तरह से आ रहा है।

तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे ही नाम से ख़त्म। लता जी और मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह मिलके आपको सुनाए हैं उत्तम जगदीश के लिखी, जी नहीं उत्तम जगदीश का म्यूजिक है और हमने निकाले फिल्म वारिस से। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनाए ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार जी। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या रहा है सुना रहा है आर डी बर्मन के साथ पर, सत्य पे सत्ता में से निकाल कर।

एवरग्रीन किशोर कुमार सत्ते पे सत्ता में से निकाले हैं और हमने पेश की ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आरदीन बर्मन के साज पर, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो लीजिए, अगर जब आप कार्यक्रम बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से सुन रहे होंगे तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

खूबसूरत तेरा चेहरा, नरगिसी है आंखें, वाह क्या बात है। आओ की तारीफ ही तारीफ, सर से पांव तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ। इसे सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वादिकर की आवाज़ में पेश हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में फिल्म ब्लैकमेल की तरफ। नेकेद इंद्रियन से ही फिल्म तक 1973 का ये गीत ब्लैकमेल का। जानी पहचानी गीत है।

पल पल दिल के पास तुम रहती हो, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत ब्लैकमेल में से निकाल कर निहित इंद्रियों से इवन तक का ये गीत। आपको एक बात भी बता दूँ, जिस समय ये फिल्म बना ब्लैकमेल और कल्याण जी आनंद जी के साज इसमें हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार ने गाए और धर्मेंद्र जी को इस पर एक्ट करना था, वही इसका स्टार कास्ट था, तो धर्मेंद्र थोड़ा दुविधा में था। वो डर रहा था कि किशोर कुमार जी का गीत शायद मुझ पर न जचे, क्योंकि वो ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ में एक्ट करता था। तो यही थोड़ा सोचते, लेकिन लोगों ने कहा फिर भी आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है गीत, तो आपको एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बहुत सोचे समझे फिर भी धर्मेंद्र ने किशोर कुमार जी के ये गीत पर एक्ट किए। आप नहीं मानोगे, ये फिल्म ब्लैकमेल बहुत पॉपुलर हुआ और ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये गीत बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ भारत में, भारत के बाहर भी, और आज तक लोग इसे ये गीत को बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग इसे अवश्य पसंद करते रहेंगे। ब्लैकमेल में से हमने निकाले, तो चलिए ब्लैकमेल के बाद हमने बढ़ते हैं, जी हाँ, असली नकली के ओर, असली नकली के ये गीत आप सुनिए।

फिल्म असली नकली से हमने निकाले ये गीत और पेश किए शुभकामना के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, आप सुन सकते थे। तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी का ये शानदार गीत। चलो सुनते हैं इस तरह से।

है वही, जी हाँ तू है वही। आर डी बर्मन के साज पर ये गीत हम पेश किए ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। और ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म ये वादा रहा का, निकती तुम तख्त का ये गीत। तो लीजिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है क्या ख्याल है। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार, किशोर कुमार जी के बाद एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर है।

दिल भर मेरे कब तक सताओगे, जी हाँ एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर ये गीत। चलो देखते हैं हमने प्लेयर में ये गीत रखे हैं, जी हाँ नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिएगा।

खाते हैं हम कसम, तुमको ही चाहेंगे, गफलत में मत पड़िए। ये कुमार सानू नहीं था, जी नहीं, ये बाबुल सुप्रियो था जो आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहून हिंदुस्तानी। www.faahoonfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। देवानंद का ये फिल्म है, जी हाँ, देवानंद का फिल्म है, क्या ख्याल है।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी हाँ रफ़ी साहब और गीता रॉय जी मिल के आपको सुनाएं ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम आपको ये गीत और सुनाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी नहीं बताएंगे, लेकिन बस सुन लीजिएगा शंकर जयकिशन के साथ पर सिर्फ़।

वाह क्या बात है, लता जी की आवाज़ में आपको सुनाया गया फिल्म आदमी में से निकाल कर हमने चलाए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। जबकि आप भी हैं, मैं हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं मैथ्यू मुकेश। जी हाँ, मैथ्यू मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, फिल्म मर्यादा, फिल्म मर्यादा के गीत हम, चलो हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा

0: जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, फिल्म मर्यादा में से निकाले हैं। मेरे पास तो ये गीत सीडी पर था इसलिए नहीं मालूम है, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती नहीं कह रहा हूँ कहूँगा, तो ये फिल्म में राजकुमार जी ने काम किए हैं। और लोग हो गए लेकिन सिर्फ राजीव कुमार के नाम मुझे इस वक्त याद है। फिल्म मर्यादा में से हमने पेश की हो फॉर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है कि राजा रानी की कहानी है। देखते हैं रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत फिल्म उपहार में से, नेगंतीन एनन सेफंद।
1: मैं एक राजा

मैं एक राजा हूँ, तू एक रानी है। रफ़ी साहब की आवाज़ में हमने पेश की निकाल कर निगति ए नसीब का ये गीत फिल्म उपहार में से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर हमने चलाए। चलिए देखते हैं, हमने प्लेयर पर रखे हैं लेकिन कहाँ गया ये, तो फिर निकल गया। बहरहाल हाँ आ गया, फिर चलिए हम आपको सुना रहे हैं एवरग्रीन किशोर कुमार जी।

वाह क्या बात है, आपने सुने एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं कि प्यार करने वालों का कभी हार नहीं होता है, इसलिए अगर प्यार करना है, हार नहीं है तो प्यार का इजहार कीजिए अवश्य। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, अभी तो देखते हैं, जी हाँ अभी थोड़ा समय अवश्य बाकी है। लीजिए इस तरह से आ रहा है, आपकी परछाइयां में से, मदन मोहन के साज पर।

लता जी, मदन मोहन के साज पर हम आपको सुनाए ये गीत। फिल्म आपकी परछाइयां में से निकाल कर निकली फिर सस्त का ये गीत, 1974 का ये गीत, ओ फरफा हो हिंदुस्तान।

कि जान चली जाए जिया नहीं जाए, रफी साहेब और लता जी फिल्म अनजाना, फिल्म अनजाना में से निकाले हैं और ये गीत हमने पेश किए आप सभी सुनने वाले श्रोताओं के लिए, जहाँ पर आप भी होंगे आपका हृदय से स्वागत है। हमने प्लेयर में एक गीत और रखे हैं, जी हाँ, क्या ख्याल है। चलो ये मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मिलाप में से निकाले हैं 1972 नेगेटिव 20 का ये फिल्म है और चलो सुनते हैं इस तरह से।

माई थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस करोड़ों के दिल पर राज करने वाला, आपको सुनाए ब्रिजभूषण के साज पर हमने पेश की फिल्म मिलाप में से निकाल कर नेगंतिन तो इन सैफ इन 1972 का ये गीत। चलिए अगला नंबर हम आपको सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल उनके पहली नज़र क्या असर कर गई, चलो लता जी आपको बताएंगे क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते।

उनकी पहली नज़र क्या असर कर गई, लता जी आपको सुनाएं फिल्म अप्रैल फूल। फिल्म अप्रैल फूल में से निकाले हैं नेगेटिव फिर से हस्तक का ये गीत, 1974 का ये गीत शंकर जय किशन के साथ पर आओ चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम प्लेयर में रखे हैं, क्या ख्याल है देखते हैं। वो दिन याद करो, जी हाँ आप भी वो दिन याद करो और मैं भी वो दिन याद कर रहा हूँ। और कौन सा दिन, कौन सी साल, 1971 का, जी हाँ, द मैन विद द गोल्डन वॉइस।

मोहब्बत की कहानियाँ लता जी और द मैन विद द गोल्डन वॉइस आपको सुनाए हैं। फिल्म वो दिन याद करो में से निकाले हैं निकती ए ने सही पत्र कहिया शानदार गीत हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रादिया। चलिए अगला गीत हम देख रहे हैं प्लेयर में हमने रखे हैं लता जी की जी लता जी के गीत हैं। देखा जाए जहाँ तक मेरा यहाँ निकती फैफ सस्तक का ये गीत है और चलिए हम आपको सुनाते हैं। फिल्म है हिमालय की गोद में से याद हिमालया हमने कहा था याद होगा हिमालय जो उस समय सूरीनाम की बात था। मैं कांप था तो एक हफ्सी आया बाहर से भीतर उन्हें गंगा गंगा एक बात बतानी है। उन्हें बोलो भाई हमने एक फिल्म देखे हैं कि पोस्टर चपकाया हुआ है हाँ ये पता नहीं कि दुलिक्स का था या इंडिया ओवरसीज का क्योंकि इंडिया ओवरसीज का फिल्म में द पारल चलाता था और दुलिक्स का जसोदरा चलाता था अब मुझे याद नहीं। बहरहाल उन्होंने कहा फिल्म का नाम है हिमालय के खुतमैन। हमने सोचा यार सोचते सोचते कुछ देर बाद याद क्योंकि गाना पहले आ जाता था सूरीनाम में ना तो याद आया हाँ निकिती फैफ सस्तक का ये फिल्म है हिमालय के गोद में। उन्होंने कहा खुतमैन तो बाद में समझा गया कि हाँ गोद में लीजिए हिमालय के गोद में से निकाल रहे हैं इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत।

सारे बगिया खिली, ये गीत पेश हुआ लता जी आपको सुनाए फिल्म हिमालय के गोद में से निकाले 1965 का ये गीत निकली फै का ये गीत, जहाँ तक मेरा ख्याल है शंकर जय किशन है, लेकिन पता नहीं, बहरहाल अगर गलत हो तो मुझे आप बता देना, शंकर जय किशन के साथ पे जहाँ तक मेरा ख्याल है। बहरहाल ये गीत हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक गीत और पेश करने वाले हैं और वो ये है, हमने तो देखे ही नहीं लेकिन चलाते हैं, चलो हम भी सुनते हैं आप भी सुनो।

0: में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का दादा आम
1: ये वाकई आपने सुने बड़े मियाँ दीवाने। जी हाँ, ये शानदार गीत हम आपको सुनाए इस तरह से। चलिए अगला गीत नंबर हम पेश करने वाले हैं इस तरह से, देखते हैं दिल तेरा दीवाना में से निकाल कर।

खान जी, रफ़ी साहब और लता जी फिल्म शंकर जय किशन में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ और आप सुन रहे हैं। उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है।

बिड्डू के साज पर हम तुम्हें चाहते हैं इसे ये गीत चलाया गया हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म कुर्बानी में से निकाल कर मनहर उदास आपको सुनाइए। चलिए आपको एक लंबा कवाली सुनाते हैं, ये मजहबी कवाली नहीं है तो भागिए मत जी ना, ये एक मोहब्बती कवाली है। तो लीजिए आपको सुनाया जाए रफ़ी साहब, आशा जी और कोरस, क्या ख्याल फिल्म द ट्रेन में से निकाल कर।

वाह क्या कव्वाली था। पल दो पल का साथ हमारा, दो पल का रिश्ता है, ये गीत पेश किया गया शाम के कार्यक्रम में। चलिए हम पेश करते हैं अगला गीत, और वो ये है।

याद रहेगा, ये रंगीन ज़माना है, याद रहेगा। ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला नंबर हम पेश करने वाले हैं वो ये है।

तुम्हें प्यार करते हैं करते रहेंगे। अब ये गीत चला सुमन कल्याणपुर और रफ़ी साहब ने पेश किए। चलिए कार्यक्रम हम आगे बढ़ाते हैं और हम पेश कर रहे हैं इस तरह से रफ़ी साहब की ये गीत फिल्म कर्ज। जी हाँ, फिल्म कर्ज में से निकाल कर चलो सुनते हैं।

दर्दे दिल दर्दे जिगर रफ़ी साहब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर आपको सुनाया फिल्म कर्ज में से निकाल कर। चलिए माइक मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, जी हाँ करोड़ों के दिल पर राज करने वाला इस तरह से है।

आंखों में रंग क्यों लाया लता जी और माई तू मुकेश द हाथ रब ऑफ मिलियंस, एक फूल चार कांटे में से निकाले हैं, नेखन तीन सस्तख 1960 का ये फिल्म और हम आपको सुनाएं। चलिए एक गीत और चला रहे हैं, जी हाँ, और ये भी जाना पहचाना गीत है मुकेश जी का, जी हाँ, सुन लीजिए इस तरह से, जी नहीं, एवरग्रीन किशोर कुमार, क्षमा कीजिए। किशोर कुमार

हैप्पी स्टेशन फार्म ऑन हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। लगभग एक घंटे तक आप सुनेंगे तेरे होतों के फूल। आप जानते हैं दोस्तों, जब प्यार मोहब्बत होता है तो नजर पड़ता है आँख पर और आँख के बाद तुरंत होठ पर। जी हाँ, ये प्यार मोहब्बत की कहानी है। फिर भी जब होत है दोस्तों तो फूलों की तरह तो हमेशा रहता है, और यही होत तो अच्छी बात करते हैं, कभी कभी बुरे बात पर। कोई बात नहीं, होत तो होत होते हैं। तेरे होठों के फूल जो है प्यारे प्यारे।

मेरे होठों से तेरे होठों के फूल प्यारी प्यारी। क्या बात है दोस्तों, ये होठों की कहानी लगभग एक घंटे तक मैं पेश करूँगा। तेरे होठों के तेरे लाली को, तेरे होठों को तेरे लाली को, तेरे जोन को घड़ियाली को, माइटी मुकेश की आवाज़ में आप सुनेंगे।

तेरे होठों को, तेरे लाली को, तेरे होठों को, तेरे लाली को, ये नासुक नासुक होठों में कैसी बात है, ऐसी बात है जो जो दबाए के चले आए।

हो तुम्हें ऐसी बात जो दुहाई है दुहाई, होठ होठ होठ तेरे होठों के फूल आप सुने हैं, आप ही का हैप्पी सीजन फाइव होने दिखाई दे रही हूँ राजन के साथ। अब की बार होठों से छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो। ये होठों से छूने वाला बात जो है दोस्तों, ये सिर्फ नहीं संगीत में होना चाहिए, हकीकत में भी जब दो होठ आपस में मिल जाता है तो क्या मजा रहता है। जगजीत सिंह की आवाज़ में

तेरे होठों के फूल, तेरे होठों के फूल, होठों पे बस तेरी नाम है। जिस तरह से एक एक सोट एक हेम्थ का क्लोप खाद जो है उसमें सिर्फ एक बटन जाते हैं, उसी तरह से ये होठ जो है सिर्फ तेरी ही नाम लेते हैं, एक दूसरा नाम का मौका नहीं है।

तेरे प्यार में पागल हो सुबह शाम, होठों पे तो सिर्फ तेरी नाम है, दूसरा नाम कहाँ से आ सकते हैं। होठों डो होठ खिले, डो होठ हिले एक गीत सुना।

जबडो होते हिलते हैं तो न सिर्फ गीत का आवाज़ आते हैं, एक दूसरा आवाज़ भी अंदर से आते हैं दोस्तों। अब की बार तेरे मेरे होठों पे, तेरे मेरे होठों पे मीठी मीठी गीत मिटवा।

दोस्तों जॉनी नंबर वन है हमारा। इस प्रोग्राम को हम यहां से रोक देते हैं और रोकने के बाद आपको पता चल चुका होगा द्रियन ट्विन तकमरीतन ओवर फाइव हो चुका है। यहां से हम लाइव देश और विदेश के समाचार को और सुनाएंगे। अभी आप लोग हमारा कोलेगा साथी राजन द्वारका से एक मस्त भरी प्रोग्राम को श्रवण किए हैं, तो यहां से हम अपना देश और विदेश के समाचार को शुरू करेंगे। आज है दर्तक यूनी हो चुका दोस्तों, बैना एन फनमांत हो चुका है, गर्मी का मौसम है और मंगलवार है। करीब द्रियन ट्विन तक मुनि 23 मिनट हबड़ा हो चुका है शाम को 5 बजने में।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फाहून की सुनने वालों को हमारा एक बार फिर से राम राम, नमस्कार, प्यार भरे लाभ, सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार सुनाना है हमारा काम, यही है हमारे मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। दोस्तों आप लोग को तो पता चल चुका होगा कि यहाँ से हम अपना सुरीनामी देश का और विदेश का समाचार भी आप लोग को सुना देंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे मौसी लोन, मौसा लोन, नानी लोन और नाना लोन, आजी आजा और परिवार लोग, आप लोग के पता है कई साल से हम समाचार को और सुनाते हैं और यहाँ पर बताए गए हैं कि आप लोग को शायद याद होगा कि 2033 में यानी 2023 में पेकिंग सारोन में तो यानी आदमी ब्लॉक ले ले फ्राखवाखन पितृक पे जान रहा और

वहां पे बहुत जबर सबन अक्षी होरी कलेरा डाम बन कर दे रहा और कितना त्रेकर में आगे लगा दे रहा, लकड़ी जर गरा, बहुत आफत मचल रहा। ये पिकिंग सरोन के बात है, मई ट्वी डिंद्री इन ट्विन तख में हमारे जनता और जैसा कोई न्यूज ना जानत हुई होश ना हुई तो तरी से हम बताई दे कि हुआ पे पिकिंग सरोन में भैया जगवल भी भइल है, स्कौतु पहुँचल है। जिसकौतु पहुँचल तो ओसी के आदमी दागे सिपाही के और सिपाही दागे उस सब के भैया। और बताए गए है कि वहाँ पर स्कौतु दागिस दुई आदमी मर गए रहा, त्वी लेकन वहाँ पे सबन ले के रहा लेली तौरप के पुलिसी विरोध के मारतीवारियों में धरल रहा। और वहाँ पर दोस्तों दो आदमी मरल रहा। पिकिंग सरोन एगो दुर्पू हैगा दौरबस कबीत में, जहाँ पे ग्रासालको हैगा मारी पास तुंग है बहुत ऑन रिस्ट करा वहाँ पे दोस्तों। एट ब्लेक द ट्वी वेरक नीम फंग ग्रासालको खैसल स्वारन दुर ओम स्तांदल लिंगन खैसल कल रहा दूसर कोई इदुई को कम करतन के ग्रासालको के दोस्तों। और बताया जैसे नाम से पुलिस ऑफ एन मोमेंट फर्स्ट क्राइम फेस्टक तेघन और बोले ग्रासालको के को अनमी के समान का बोले हैगा खैसल कर ले रहा हमारे जनता। और बतावे हैगा उही में दगवल भइल है ओसी से बंदूक ऐसी से सिपाही के बंदूक और दुई आदमी ओमा मर गए रहा दोस्तों। और जब मर गए रहा तो कर बारे में जड़ जबरदस्त साग गए फॉर द रेक्टर कि सिपाही लोग के चाहिए बन होवे के तो एमा इन द दाद भैया स्कूतू लोग के साग गए है दोरो। और जो नरमियन दुई को मरल रही एगो नाम रहा मार्टिनेस वॉल्फियाखर और एक वक नाम बा इफा नेल्डो डेगस्टील। तो दोनों सिपाही दाग के मार ढाले रहा हुआ दोस्तों। तो ओकर ना बस्तांतन जो रहा फॉर द रेक्त लेके कि सिपाही लोग के चाहिए बन होवे के तो एक बार में अब जाए के सखवा रोंत भइल है फॉर द रेक्तर सखवा गइल हैगा पुलिसी ऑफ त्रिनेट पिकिंग सरोन सुरीनाम में। और चारों स्कौतुन जो रहा बस फ्राई खसप्रोकन हुई गए भैया चारों स्कौतु के और रेक्टर फ्राई खसप्रोक कर दी से। और ये रेक्टर हैगा सिंथिया क्लेन बोले हैगा बवीसन फॉर क्लारिंग से मैं से अख्तर द बत्रोकन अखेंतन दारफो निस्त्रावर आठ मिला के रहा। और बोले आठों के फ्राई खसप्रो को ही गए हैं बोले ओमदत इस सब दागी से उस सब के कि नोट वेर में रहा बोले दगवल उधर से होत रहा इधर से भी होत रहा। यही के मारे में बोले द सेफन अखेंदर वर्दन फरदाख फन खबरई फन डिस्प्रो पोर्शनेल खवेल्थ बोले उस सब दागे रहा को उतोन बोले नानू उड़खरा दागे ओकर खात रेख्तर इस सब के फ्राई खसप्रो का करी से बोले इस सब नोट वेर में अपन के दागी से बोले द दाखतन वारन दूच लाख दुनु मर गए रहा स्वार में सांदंग में दूत खफोलक एन दूत दो शुल ते लास्त खलेक एक रूपल स्कूतों को पर कर ले रहा। फॉर वार्लेक बोले 12 महीना के जहल का एस्ट मेट अन प्रूफ स्टेट फन द्रियार तेन आंसीन मार्टिनेस वॉल्फ यागन सेन फीर अगेंटन फ्रेग गesproken van alle feiten in de zaak rond Ivaldo Deegstil oordeelde rechter dat geen sprake was van doodslag wel achter de rechter bewezen dat drie agenten schuld hadden aan dood van Dijksteel, bolle inderdaad die 10 sipahioke dagis zijn, bolle toch bewezen verklaring niet strafbaar volgens de vonnis, was sprake van een noodweer situatie. De agenten hebben wel geschoten, maar deden dat volgens de rechter binnen hun bevoegdheid als politieambtenaren, gelet op het geweld en grimmige omstandigheden. Op dat moment mensen, toch ja wat aanwegen, कि रेक्टर बोले हैगा रेक्टर को हम दार अब तो ओनस्लाग फन आल रेक्स फॉर फॉलकिंग और बोले तीनों सिपाहियन बेवी दो दोर स्कूल बवेचर वेर खबाग दर बदेकन दर दर फेट यूरिडिस वेल बवेचन इस मार द फर्दाख्तन दार फो निस्त्रावार सैन मेंसे। तो दो आदमी मर गए रहा भैया रिफाल्डो और एक और अभिवराम बताए थे लेकिन सबके सिपाही छोड़
छोड़ दी से हमारे जनता जने सिपाही ना रखतर सबके छोड़ दी से बोले सब दागी से अपने बचाओ खातीन नोत वेर के बोले ओशो दगल होतरा ऐशो दगल होतरा बोले जैसी पाही ना दागत अपने मर जातो तो बोले उस सब नोत साख रहा दागे के और बोले मा दुई आदमी बोले मर गए है हमारी जनता। एक औरत भैया गई ले वैदम बॉस ब्रुक पे ना हबड़ा होत रहा नानी गैला कूदे भैया गैला कूदे ऊपर से वैदव ओतो और ओतो ना बुताई से ओतो लेके गैला और ऑन बहेर ओतो हुआ छोड़ दे से और हुआ पे बताई गई है रात के वैदव बॉस ब्रुक के पास कूद गए है औरत मशीन ओतो के समय ना रहा बुतावे के और 5 बजे सवेरे सिपाही गई है पुलिस ब्यूरो हरमान गुदिंग क्रीक 5 बजे मेल्डिंग पाई से कि वो ओतो वैदव बॉस ब्रुक पे है जो उनके मुंह उतर ड्राई हुए है और बोले बेटा आंस कम स्ट्रॉफन द वेस्ट इन आर ऑटो पाइस में बस्तूर द ना पाइस टरवेल द मोटर नोग ड्राइड द कैमरा बिल्डन इज फॉलोस पुलिस केकन दैट द बस्तूर फ्रॉम द ब्रुक इज स्प्रंगन और वहां कैमरा लगावले ऊपर देखान के औरतियां पानी में कूद गए हैं लेकिन यहां पे नहीं बताए गए हैं कि उसका लाश मिला है कि ना। वन ब्रुक की पसे कूदियो भैया तो कम में आशा है कि तुम्हारा लेक मिलेगा। आ तो हम पाई तुलन जानो भैया एनपीएस में चल गए हैगा पहले रहा पुलिस बॉन सिपाही में रहा अब पार्लियामेंटारियर हो गए हैगा यानी कि पातो आतोम पाई पार्लियामेंटारी हुई गए एनपीएस के और बोले इन सूरीनाम दी ओवर अ बस वर्गुनिंग बस के कन बोले सब्सिडी फ्रॉम द ओवरहेड ऑनफांगन मार हिन बसन हैवन हियर अंडर फॉलन ओ पर्सन इन बिपाल फंक्शन बक्लीन बोले एक एक गो आदमी लोग के बोले सब्सिडी मिले बोले के बस है ये ना आएगा बोले कैसे हो सके हैं तो सन्ना में तो आदमी काम भी ना करे पैसा पावे भैया और मिस्त्रासी हुआ पे ऐसे बोल दी एक को बुन देख करे भाई तेज बखरौती महानदलिंग में एक बारे में एक स्पूदक महानदलिंग आयल है बोलेगा फांद काल प्लिक वेत ओम दे इसे परसोनन अंत पकन कि इसे परमीन के जहीं पकड़ाई के बोले दे मांग नो आभी बेस बोले सेंस यार एंड दाग होनन वदर फरक्यूनिंग वर्दन फरकोक बोले बेस है ये ना फरक्यूनिंग बिका है बोले अनमान नो हावी बेस एने कांसो 20 फांस आनवेशन ये हैव मेंशन दी अन बरूप इरफान हैवन खमाग एंड दारो मुद काल प्लिक वेत कोमन ओम दैट वे मेंशन हैव दी in de functie zijn gegaan, busvergunning hebben verkocht en miljonair zijn geworden hoe ze vergunning aanvragen op bus of vergunning submaanden we op beter subsidie pauwen he. Bole 1 persoon heeft 10 busvergunningen en elke man ontvangt hij 10 maal de subsidie van mama's ranang en dan en den potisma erbari zei de NPS'er dat bole 10 vergunningen bus hierna hem और बेर बेर फरक्यूनिंग मांग के फरक्यूनिंग बेच देवे और सब्सिडी अपन दोनों पावे हैं फोकस द पोलिटिकल मुद्दे रखेरिंग बेहतर खान कही करना द सब्सिडी बलाइत बोले एन अलीन दखीन सब्सिडियरन दी डेट नो दख है तो बोले हैगा आतोम पाई और बोले दे ना लेडन एवी जूस एनडीपी के और इफानेलो प्लेन एनपीएस के दिन दिन इन दिसंबर आल फोरक वीक अन वेट फॉर स्टेल फॉर ऑन द नीमेन बोले है का बके कर बारे में ओ वी फी फी सो खनाम द काल प्लुक वेट इन हेट मोगलिक मुद माकन एन फर ओर दिन फॉलीडिक तो ओटनीमन फान वेख वेदर रेख्टक फरक्रेगन फान फोर देलन तन्ना भैया काल प्लुक ते इल काल प्लुक वेत तो संबंध रिये बाकी इस सब के जाइए काल प्लुक करे वन इस सब के करिए भैया काल प्लुक वन वहाँ पे जब कोई पैसा पाएंगे तो के कुछ है ना पाइए कौन ची सूरीनामे में तो लोग जानो भैया काल प्लुक वेत नाम है बस मैं आउट एंडलक वर्ड नहीं मेर खबर है। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता आप देखो एनडीपी के बारे में ही एनपीएस और एनडीपी भैया अपरे में बोले हैं एनडीपी बोले हैं बोले हैं बोले इन अन खसीन स्कूल टास प्रोजेक्ट एगो सरना में खोली से रखेरिंग सिमोंस और रुसलान के बोले सामन खोली से बके क्वालिसी खनोट एनपीएस आइट फूरन आल टांस दत इसका
gebleken uit de discussie die je namen. Die doenoe partijen hebben gevoerd tijdens de begrotingsbehandeling. Wel op dit moment is het schooltaalproject ondergebracht bij het ministerie van een jeugdontwikkeling en sport. Op het eigen Betuigen waarvan de minister uit de gelederen van de NDP voorkomt. Op bollega to jeugdke delen waar de bekuw NDP kehen, waarvan NPS bi-coalitie me ba. Op bolle begrotingsbehandeling met NDP A.B. Jones bolle he, ki schools project wa jone onder minister Joske naam pe chahen jaike. Op NPS bolle Joske minister NDP kehen, ta janta sojik NDP pa maanti se. Op bolle u NDP na maanti se ga. Bolle NPS जियाना लेट प्लेन बोले है फोर्स टेल कर दीजिएगा कि प्रोजेक्ट वन चाहेगा तीन मिनिस्टर के इसका सामने चाहे अटफूर करे के बोले हैगा मिनोफ के और हैगा उकर यानी शशाल साक के और सो साफो के बोले एनपीएस बहेत अल दरी मिनिस्टर हैवन राक फ्लकन में द स्कूल तसन प्रोजेक्ट जोस गात ओवर युग्धन मिनोफ ओवर एडुकेशन en zo samen onder sociale zwakkeren. Alle drie hebben de school dat ze nodig laten we onder één budget het project uitvoeren. Er komt dan een gezamenlijke aanvraagformulier waardoor er geen overlappingen plaatsvinden. Wat nu gebeurd is, is niet efficiënt en effectief, mensen. Dit is een ठीक बात बोले है इथरो अपन जे भी पैसा लगाइए भैया यहां बताए गए है ई प्रोजेक्ट वा जोन हैगा ई लांटी के भैया देना लेट रुसाला कोस्टिनो से दैट है स्कूल प्रोजेक्ट बहोनन इस स्टेज इन बौतर के रेगिंग में 2003 में अब बोले हैगा स्पोर्ट एंड यूथ साखन बोल के ऑलटाइम करी से द एनडीपी टू ook minister van onderwijs maar hij bewust gekozen om het toen sportzaken te doen. Op de NPS DNA Poetin Atompai niet terugvinden in deze stelling. 2010 is dat zo gebeurd, maar als we het evalueren moeten we het toch achten anders doen. Bolle NDP fractieleider de absap koi te mangen op een naam bataan bhaiya ki hum batli bati jo ne hum stem hua pai to bhaiya ye sab baat koi na dekhe janta ke chahi mile ke chahi dikhawe ki ke baate hai jo ne namua u banave aise batiya hai हमारे प्यारे प्यारे जनता अब देखो भैया ने कहा बोले अमेरिका को हम जाए तो जाने हैं और यू बाइडन एक्स आउट प्रेसिडेंट रहा और ट्रम्प के देखिए का बोले भैया प्रेसिडेंट ट्रम्प के बोले हैगा अन डेमोक्रेटिक पार्टी खाला इन मैरीलैंड स्कैरप के अनफाल करी से 83 यार के हो गए जो बाइडन पॉलिटिकल रिफाल ने अंदर मीर अ नार्सिसिस्ट हैगा करप्ट एंड लूसर बोली से बाइडन के ओके भैया है प्राग फ्राइडे आवर इन द हनोवर टेनिस बे इनकम्स वार में हेल्प वेट इन खस्कामल फॉर द डेमोक्रेटिक पार्टी इन आनलोप नार द टुसेंटेसे वर्किसिंग फॉर नोवेंबर Op het AW in zijn ongeveer 10 minuten keer toespraak met Biden. Kijf punten lijstje Trump volgens zijn fout. Hij richtte zijn kritiek onder meer op de Amerikaanse opstelling tegenover de NAVO en Rusland. Kebare mee. De bari baan Joe Biden 10 minuten mee. Of Trump ke bolie se. Want hoe heb je bij verkiezing hoe het jahin hoeg na. तो ये सब बात हो रहा देखो भैया अमेरिका फूर अनफालन अमेरिका फिर अनफाल करी से ईरान के ऊपर आज रिएक्शन अनफाल ओपन स्केप एगो बोर्ड के ऊपर अनफाल करी से तो बोले अमेरिका बोले लुक अनफाल करी से ईरान के ऊपर एगो बोर्ड पे अमेरिका के मिलिटेर करी से मेरे ओस्ट में बोले द अनफॉल इज फॉल्कन सेंट्रम रिएक्शन ऑफ द अनफॉल ऑफ अ फ्रैगशिप किस्ट्रेन काल एगो फ्रैगशिप पे बोले वार द अमेरिकन से प्रेसिडेंट ईरान फॉर फ्रंटवर्डलक हाउस ईरान एगो बोर्ड पे दागे रहा तो आज अमेरिका उल्टा दागे से ये सब का करे भैया दो रोज अन फ्रेडरिक करे अति रोज में लड़ाई शुरू कर दे है तो अमेरिका के बड़का खफेक्स फ्लिक तईखन जोन है Geil he, Iran ke opslagplaatsen voor raketten en drones hebben gebombardeerd. Ja, ik heb daar gezegd, hoe ze op opslagplaats en drone ke. Op de radarposten langs de Iranse kust waren volgens Senskund het doelwit.
Iraanse staatsmedia berichten, bolle de omgeving van een pier bij de kustplaats strik was getroffen door een projectiel. Er is een akkoord bij de vrede met de bolle de bija. Hij is vice-president, premier, fancy, bolle hega. Aanvallen bij de hebben geweld met geweld wordt besteden. Bolle hoe je geweld kerk wordt dagen gaat, hamloker deze dagen. Bolle als het Iran het oneens is met hoe de wapenstilstand wordt gehandhaafd, moeten ze telefonisch contact opnemen. Schrijft hij op. Bolle jou eens laten, bolle hamloker belker, bolle naar je bord toe dagen. Toen ik er waren met 10 drones konden worden neergehaald, zegt Drum. Bolle Amerikaanse president die in sociale media post. Niet gemeld waarna de Iraanse aanvallen plaatsvonden. Ik op Britse maritiem organisatie hega, Obolis hega, Bolle Oman werd geraakt door een projectiel. Ja. De waarschuwker is de Iraanse autoriteiten. Waarschuwker is hebben na de aanval gewaarschuwd dat schepen die buiten de door Iran vastgestelde route varen geen garantie hebben op een veilige doorgaan. Ook zegt Iran dat de gevolgen van het gevaren, dat het varen via geautoriseerde routes, de verantwoordelijkheid zijn van de eigenaren, de exploitant en de kapitein van het schip. Op de Iraanse staatstelevisie berichtte dat 3 tankers na een waarschuwing van de garde zijn omgekeerd omdat ze hadden geprobeerd om de ongeautoriseerde wijze door de straat Hormuz te varen. ते बोर्ड जो नदमी चलावे भैया उस सबके रिसिको बरा भाड़ी भाए चला जाए फेनिसवेला को भैया जहां मदुरा के पकड़ के अमेरिका बन करी से आप लोग तो जानो भैया हुआ पे और तू जाने मदुरा जो रहा बहुतस के बहुत बड़का दोस्त रहा जो समय पे बहुतस लुकान रहा कोई सोयत रहा चल गए फेनिसवेला में एवं बेड वार दी में से रिश्ता स्क्री फार्म खनान और दोनों पटत रहा और आज फेनिसवेला में इतना बड़का दुख है और सरनाम कुछ ना करे भैया तो बड़ी दुख की बात है कि ओकर देश में इतना ढेर आदमी मरल हैगा दौड़न दुबला आर्थवेफिंग भइल हैगा फिर 300 तक भैया बोले दुबला आर्थ इस अफकलोपन तो मिनिस्टर 1400 तक गो इन द स्वास्थ्य खतरोफन कुस्त्रांत जो ने ग्वारा में जहां पे पलवार लोन लाश हुई गए भैया आदमी लोन सब पेन के नीचे वहां आदमी खोजा है नॉट ओवर लीफंड terwijl veel bewoners klagen over een ontoereikende hulpverlening. Hoe ze het na hè, hulpverlener. De Venezolaanse autoriteiten maakten zaterdag bekend dat 1430 mensen morgen zijn. Doei go zware aardbeving bij de boeddhwaar. Ze zeggen 7,2 en 7,5 bevinding hadden van de magnitudes. Ze veroorzaakte grote schade onder. और एक बारे में जो तो ओके जनता के दुख है वहां पे फैमिली है वो फॉक्स ने मिस रिसेंट और बोले हैगा 68,900 आदमी लाश हुई के ना पावे हैं और बोले है अंताल ने गवंदन is afgelopen tot meer dan 3200 duizenden mensen hebben hun woning verlaten mensen op willen naar de schok. De eerste cruciale dagen na de ramp zijn voorbij, maar redderswerken blijven zoeken naar tekening van leven. En ja, wat ik je dosto, ki de en ik er baren mee, bolle behoud moeilijk hega door de beschadigde wegen met chelke, jijke bolle internationale luchthaven joen hega, en hoe Caracas met liep schade ook mensen waardoor aanvoer van hulp en personeel vertraging heeft gelopen. Zoekerwaar ke 4,9 krachtdragen geregistreerd voor de noordkust van Venezuela. De nashock werd gevoeld onder meer Caracas. Op de Europese Unie 5 miljoen euro deze noodhulp vrijgemaakt via de Europese mechanisme voor civiele bescherming, reddingsteam, brandweerlieden en medische personeel gemobiliseerd. Ook satellietbeelden worden gebruikt om de schade in kaart te brengen tot 5 miljoen
पैसा यूरोपा दे सेगा ब्रांडवेयर के और रेडिंग्स के हेल्प करे के अब दुबला आर्टबेविंग खल अस इन फन स्वास्थ्य रंपन जो वेनेजुएला में भइल है और अमेरिका रजिस्ट्रेट heeft 150 miljoen aan noodhulp van Venezuela gemobiliseerd. Amerika 150 miljoen dollar noodhulp tegen kabelen Venezuela. Daarvan gaat 50 miljoen naar de organisatie in direct ingetroffen gebied actief, waaronder het wereldvoedprogramma van de Amerikaanse en internationale medicaal korps. Willen 100 miljoen bestemd voor het gezamenlijke noodfonds van de Verenigde Naties. President Rodriguez had vrijdag telefonisch overleg met Donald Trump en de Amerikaanse minister Binnenlandse Zaken. Wat jij zegt, ik kijk je gewoon ke hulp. Lekker hem Suriname ke baren me kahuna padila bhaiya. Ki Suriname ke koi gail hai. Aur Venezuela me koi madad kare hai. Koi madad kare hai. Want Suriname me Venezuela kalmi bhi bahut rahe lagal hai. Jo samay pe मदुरा हुआ पे खाई पानी ना रहा तर्मी भक के वेनेजुएला में रहा और जो समय पे अमेरिका वेनेजुएला का मदुरा ले गया रहा उस समय पे हम लोग के प्रेसिडेंट सुरीनाम के ना इंस रहा और आज देशों में दुख परल है दहोर एक निमंदर ऊपर सेख कि कोई एक साका चाउर हुआ पे जाए के दे दे कोई हेल्प जाए हुआ पे खोजे के दोस्तों En dat vind ik heel jammer, jammer, jammer, jammer. Zoveel mensen zijn daar. Namelijk dood mensen. Hamdjaila, ex-voorzitter van de DNA en tegenwoordige minister van Binnenlandse Zaken van Suriname. Omarinus van BK, bole bhaiya. Begrotingsbehandeling met anonieme bole admi bataye se ke kehiya chori kare. Ke na kare he bhai, batiya tari batao. Volgens bewindsman bole he ego meldlijn jahi khole ke waar bredere opschoning van overheidsapparaat na bij de controles grote verschillen zijn geconstateerd tijdens de personeelbestanden het aantal daadwerkelijke geïdentificeerde landsdienaren John en mij gharé baithe buitenland mee he spoor na sabke paisa aur lanti bhare he tamare is par bole tu click line ko khol aur nahi ego whatsapp khol ke koi chugli kare hum log ke lage jo ne admin ke hum log pakad sakila aur bole he ga minister kopal kare he introduction van de meldlijn aan bole anoniem bhi batai sake he minister uitvoer om personeelsadministratie van de overheid op orde te brengen bhaiya aur mange apan personeelsadministratie in orde brengen kare want administratie Suriname ke waarde na hai bhai usse apan nawa nawa systeem na gebruik kare of hebben ze dat niet tegenwoordig kan alles mensen alles kan het via computer, maar dan moeten ze namelijk goede ICT'ers daarvoor hebben die al die programma's en de invoering van elkaar kan krijgen. Bullen de introductie van de kliklijn leiden tot vragen vanuit Nationale Assemblée. Diverse assembleeleden ondersteunen de aanpak van misstanden, maar vroeger ook aandacht voor de bescherming van melders. Zo werd erop gewezen dat meldingen via WhatsApp mogelijk de identiteit van de melder kunnen prijsgeven. Oh, bole he, ki abe koi melder kari oka naam boven water raja het beloochit na hoi. A bole WhatsApp se kari to suwin so bole na mien jaan jai. De bole het moet een manier zoeken ki o na mien ke naam voor na awe. Volgens B is de kliklijn bedoeld om fraude, misbruik en andere onregelmatigheden sneller aan het licht te brengen mensen. तो ये मा अब ये काम मांगे हैं करे हम जाई तेरे आपल दोरन की ओर भैया एगो 51 यार के आदमी यूट्रेख्ट के हाँ ये आदमिया का करी से भैया ऊपर से ई बवारदर रहा खफांगनेस बवारदर रहा से नाम में बोले सिपाही यानी सिपीर यहाँ पे भी बोले है बाकी ई एगो खफांगनेस है न्यूवर स्लाइस में तो ई आदमिया रहा हुआ के सिपीर बवारदर रहा और घुस के जाई के एगो औरत के जहलिया के
2003 में ओकर सेल में घुस के जाई के और ओके का बोले हियां बताए ऑफ दैट मोमेंट जे गईल होकर जहल में वारद अंदर दीती निरेदन अंदर लंचन एक वन खात रहा और ये बे भीतर में रहा दीदा ब्लीव द फ्रॉ इन हर सेल ओम दस नीड खुल फुल द औरतिया न मात्रा जाए खाए और अपन जहलिए में रहा तब बोले ना द फर्क जाए के और इसी पीर ओकर मुंह बंद करके ओके हुआ फर्क क्रक करी से दोस्तों तेखन हर खसेक दस हर मन मुसौदन ना बोले तो अपन मुंह बंद कर ओवर व्हाट एर वास गबर्ट ओम दस अंडर स्कोन वार्डन ओवर का प्लान बोले जे तू सबसे बतिए तो के और खफांग अंते धरप हम लोन द फ्रॉ डे 2003 में अन गिफ्ट करी से गा और बोलेगा 2022 में सकवा पास बकलाख प्रोसीड्यूर गेल है वार बे इमांत है ओएमफीआर करेक्ट हो फ्रा om toch over te gaan tot vervolging. Obolega M ging na de schorsing weer aan het werk in de gevangenis. Hij heeft de verkrachting altijd ontkend. Volgens de rechtbank is er juist sterk bewijs voor de zaak. Zo zag een mede gedetineerde haar huilen naar een vriendin toe rennen aan wie ze later haar verhaal deed. Ook belde ze een penvriend overstuur op over de gebeurtenissen. De rechtbank oordeelt daarom dat de gevangenisbewaarder zich schuldig heeft gemaakt aan de verkrachting. Maar oké, Jalmi Lelebaya, grove wijze heeft misbruikt. Daarom legde de rechtbank de man een gevangenisstraf van 3 jaar en mag hij 5 jaar lang niet de gevangenisbewaarder werken. Ook moet hij vrouw ruim €10.600 aan schadevergoeding betalen, mensen. तो ये बात है उत्तराखंड के भाई की गफांगिंस बरवारदर ई तो पकड़ाई गई है बाकी कितने हैं जो जाए के ये सब काम करके चल रहे हैं और कोई नाम ना ले हुए है बतावे ना है कि का भइल है और का ना भइले हमारे जनता ये सब बात है तो एक गीत हम आप लोग के सुना देते हैं।

आखिरी समाचार आप लोग को सुनाएंगे भैया। सूरीनाम की ओर हम जा रहे हैं। फरियारी हुए भैया तो खबाक कटा है, खबाक कटा है सूरीनाम में बोले तार्थ का कटा है। और यहाँ पे एगो आदमी अपन औरत और बिटिया के काठी से फरियार दाख के रोज भैया ये बातचीत हुए है मेसांदल भैल है, ये मेसांदल भैल है भैया। फरियारी रहा एक बिटिया भैला 18 बरिस के तो ओकर फरियारी रहा तुतली फौ कनाल वह के बातचीत है। एगो त्वेन फे तक यार के औरत के और त्वेन त्वेन त्वेन तक यार के बिटिया के बाप या आदमी भूखी से छुरी से भैया पहले ताकताकी भइल है वो द विसलिंग भइल है ट्यूशन द फ्रॉम एंड नमान उतरे में एस्कालेर हो गए झगड़वा इतना जाना कि छुरी से आदमी औरतिया के भूखी से और बोले बिटियों के हाथ में भूखी से दोनों गैल है भैया और गैल है अनेका बोले हसी कौन हंस में और बोले अख्तिन यार रख दिया रख वास एफनील उकर 18 इसके फ्रिंदेन भी आयला ओहु सब ऐसी दें तो हमें मांग के ओहु सब में सांदल भैल है ओहु सब के चोट लगल है तो तुए ये फिर तक यार का औरत 22 बरिस की बिटिया अम्बिनान सब के ले गए हैगा द फ्रॉ लिपस्टिक वंदन ऑफ आन हर बीन एंड रे मार डॉक्टर वेन इन हर आर्म कस्टोकर ओवर द एनस्टर फान एंड फॉरवार्निंग इज फॉर आल्सो नीड बकेन ना द इंसिडेंट फॉर लीड फरदाखते द प्लांट है री वेग इन द ग्रेजे ट्यूटा हरियर van zijn vrouw over het jeke auto leke en uitschel gehe. तो दोस्तों इसी गीत से है हम आज के समाचार आपको जो सुनाए हैं और खत्म करते हैं। एक घंटा करीब हो चुका है दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब। सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है हमारा नाम।

हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

मेरी प्राण में आखिरी प्राण बसा आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाख का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

चुल्लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को, और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झाक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोंग हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोंग है।

और दोस्तों ये था और ये अनिल भीम। हम एक सॉन्ग और जाते हैं आंद्रे रॉय की ओर, इंद्रनील रॉय की ओर हम जाते हैं दोस्तों।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और गुजरा हुआ जमाना तो कभी तो लौट के नहीं आता है। और नाइटिंगेल लता का ये ओरिजिनल सॉन्ग थी दोस्तों। और इसके बाद आज हम आप लोग को पुराने गीतों की ओर लेकर फिर चलते हैं। और ये गीत जो है बहुत पुराना गीत है, वसंत देसाई का। और सुना जाए ये गीत, जब ये फिल्म चले थे दोस्तों तो मेरा अभी कुछ नाम हो और निशान नहीं।

और टीम टीम टीम तारों के गीत चले। तो दोस्तों हम चलते हैं अगला जोन की ओर। ये भी एक मस्त भरी पुरानी गीत है और ये गीत आप लोग को 1955 का ये जोन है। मोफी के नाम है मुनीम जी, मोफी के नाम है मुनीम जी, जिसमें देवानंद ने काम किया है प्राण के साथ में। आओ सुना जाए ये क्या गाते हैं और किशोर कुमार का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और इसके बाद हम चलते हैं पद्मश्री मोहम्मद रफी की ओर और आशा भोसले की ओर। एक क्लासिक रोमांटिक सॉन्ग है और द्वैत सूरज। दोस्तों हम चलते हैं, आओ मिल के सुना जाए। मूवी के नाम है सूरज नहीं खती होंदत, मूवी का नाम है सूरज नहीं खती होंदत। एंड सेस का ये सॉन्ग है।

तो दिल के भंवरे करे पुकार, अभी आपको हम जरूर सुनाएंगे, लेकिन पहले लेकर चलते हैं एक बार आता है दिन ऐसा।

और रोज नहीं। अभी आप लोग को हमने सुनाई थी एक गीत, दिल का भंवरे कहे पुकारा, अनंत देवानंद का ये सॉन्ग है। इस गीत को लेकर हम और चलते हैं।

दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं एक गीत है दोस्तों 1940 का, मौफी का नाम है अनमोल घड़ी, अनमोल घड़ी मौफी का नाम है। महमूद खान ने इस फिल्म में डायरेक्टर थे दोस्तों, toen was ik nog niet eens geboren, ik weet het niet, ik heb deze film ook niet gezien, maar हमारे दोस्तों जो है यहाँ पे रेडियो पर वो सब इस फिल्म देख चुका है और हमसे कहा कि जॉनी जरूर चलाना, तो हम जरूर चलाएंगे, आओ मिलकर सुना जाए। ये कालम नहीं है दोस्तों।

अम्बली वाली, तो ये सब नाम तो हमने अपनी जिंदगी में भी नहीं सुना है, लेकिन इस मूवी में काम किया है सुरेंद्र नूर जहां सुरैया, सहू राजा अनवरी, मुरत एंड लीला मिश्रा का ये सॉन्ग है दोस्तों। हम फिर एक पुराने गीत की ओर जाते हैं, फिल्म के नाम है जाल नेगेटिव हंड्रेड एंड ट्वेन फेफ्थ का ये सॉन्ग है दोस्तों, और इसकी ताव सुना जाए। दिस इज हेमंत दादा।

Jal, 1952 का ये सॉन्ग है और वो बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, बचपन में मोहब्बत बहुत लोग किया है, तो हम आपको उस दौर उस यादों की ओर लेकर चलते हैं जिस मूवी के नाम है दीदार, 1951 का ये सॉन्ग है। और अगर बचपन में आप किसी से मोहब्बत किया है तो आप इस गीत से उसको या उसकी याद कर सकते।

और बचपन की ये दिनी आपको कभी भुलाना नहीं चाहिए दोस्तों। कभी कभी लोग कहते हैं भूल गया है, लेकिन बचपन की मोहब्बत की जो संबंध है वो तुम्हारे साथ चलते हैं। अगला गीत की ओर हम चलते हैं। छोड़ दो हमारी आंचल, क्योंकि जब हमारे आंचल पकड़ेगी तो दुनिया बोलेगा कि सरक के गिर न जाए या कुछ और न दिखा जाए।

करेगा दोस्तों। और किशोर दादा का एक और सॉन्ग हम आप लोग को यहाँ पे सुनाएंगे, नाइटिंगेल लता जी, और फिल्म के नाम है निमी, और ये लता नहीं दोस्तों, यानी ये रफी नहीं है, लेकिन नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। उरन खटोला मूवी का नाम है।

और मूवी का नाम है साजन और कुछ हिट सॉन्ग आप लोग को हम आज सुने। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर।

दर्द करने को ये सॉन्ग दे और हम चलते ही दोस्तों, आप लोग जानते ही यार नहीं खत का सोन और वो कुछ और थे और इन गोल तो और कुछ है दोस्तों। और जो नया नया गीत है वो तो भी अपनी जगह पे भी वो ठीक है, लेकिन हम चलते हैं यार निघन तक का जों और वो है बहुत प्यार करते हैं और करते ही रहेंगे। मोफिक राम है साजन।

प्यार करते हैं, तुझको जन्म तार आया है लेवाड़े से दोस्तों। मैं दीवाना मस्ताना और है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है।

और ये बहुत पुराना गीत है और करोड़ों को दिल चुराने वाला वो है माइती मुकेश का ये सॉन्ग है। और इस फिल्म में दोस्तों बहुत पुराना फिल्म है 40 Days का ये मूवी सॉन्ग है जो आप सबके लिए हमने चला दिया है। इसमें प्रेमनाथ ने काम किया है शकीला के साथ। तो दोस्तों तो प्यार का सुहाना जफर आपको हम सुनाएंगे। मुकेश एवरग्रीन मेलोडी सॉन्ग है, ओल्ड हिंदी रोमांटिक सॉन्ग आपको हम यहां से सुनाएंगे। और गीत है इस फिल्म में दोस्तों, लेकिन आपको हम सुनाएंगे प्यार का सुहाना जफर है।

अभी अपना दिल उसी को दीजिए जिस तुम्हारे दिल के काबिल है। तो काबिल के बांझ करते हैं तो हम चलते हैं। मौफी के नाम है भरोसा, निकटी होंद द्रियन सस्तक का ये फिल्म है और गुरुदत्त और आशा परेख ने इस मूवी में सुपरहिट फॉलो फिल्म है जिसमें काम किया है। आओ मिलकर सुना जाए दोस्तों।

0: की खैर तेरे बालों की खैर क्यों ना जुल्मी ओ जालिम ले जाना हो तेरे।
1: यस दोस्तों, तो ये कुछ बीच बीच में कभी कभी अच्छे अच्छे गीत सुनाने के मूड में हम हो जाते हैं, और जब गीत सुनाते हैं तो कभी कभी दिल भी रो देते हैं हमारे दोस्तों।

तारीफ करते हैं गुरुदत्त और आशा पारेख ने। भरोसा मूवी के नाम है निगेटिव द्री एंसेस्टर का, बदमाश श्री मोहम्मद रफी का ये गया हुआ जोंग है। दोस्तों हम चलते हैं अगला अगला अगला अगला जोंग की ओर है।

0: इस मूवी में और फिल्म के नाम है अंदाज 1949 का ये सॉन्ग है जिसमें दिलीप कुमार ने काम किए हैं और राजेंद्र कुमार ने काम किए हैं नौजात के साथ में
1: ना दिल ना
0: हम चलते हैं एक और सॉन्ग आशा भोसले मधुबाला अशोक कुमार इस फिल्म में काम किए हैं हावड़ा ब्रिज

मूवी के नाम थी हावड़ा ब्रिज। एक और अगला सॉन्ग किम जेते दूर कोई गाए धुनिए।

और तू धरती पे चाहे जहां भी रहोगे, चाहे श्री नाम में रहोगे या जहां भी रहेगे, तेरे धड़कन से पहचान लूंगा अलका याग्निक कुमार शानू का ये प्यार भरी लवली सॉन्ग थे। और तलाश का ये सॉन्ग है, आओ मिलकर सुना जाए।

तुम बदल न जाना, मौसम की तरह मूवी के नाम था तलाश के बाद में हम जाते हैं। मूवी का नाम है राजा निघंटिन 105 नेकत का ये प्यार भरी सॉन्ग अलका याग्निक और उदित नारायण का ये मीठा मीठा लवली प्यार भरी और ये गीत है।

और जरा फिर से तुम जरूर कहना कि आपकी जोनी का प्रोग्राम कैसे लग रहा है। मीठी मीठी प्यारी प्यारी बात करने की आदत से बन गया है तो दिल तेरे दिल मेरे पास और रहना, तेरे दिल मेरे पास रहना। उदित नारायण आका याग्निक का ये सॉन्ग है।

और तेरे दिल मेरे पास भी अब रहने दो ना। अगर जे तेरे दिल मेरे पास है तो उसको क्या लोगे। एक बीच में ओल्ड एंड गोल्ड की सॉन्ग भी आप लोग को हम सुना देते हैं। ऐ हुस्न परी चेहरा, शरबानू राजेंद्र कुमार का ये सॉन्ग है, फिल्म है, और जिसमें मूवी का नाम है, यहाँ पर बताई गई है, इस ओल्ड इज गोल्ड अमन जोंग का ये गीत है। पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये गाया हुआ गीत, आओ सुना जाए।

पसंद हो राजेंद्र कुमार शेरबानु अमन सॉन्ग्स का ये गीत है, एक ओल्ड एंड गोल्ड भी इसमें हम लगा दिया है। साथ साथ हम चलते हैं जोनू जोनू और जोनू निगम की ओर चलते हैं, जिसने यारा नहीं खत का हिट सॉन्ग है गोविंदा जी। इसमें क्या करते भैया, किसी को दुल्हन बनाते हैं। अगर आप भी अपन दुल्हनिया के लिए कुछ गीत गाना चाहते या बजवाना चाहते हैं तो यहाँ सुनिए कौन सा गीत आपको चॉइस करना चाहिए।

समझ गए ना कि जिद मत करना, अगर शादी बनाना है तो उसी से बनाइए, नहीं कुंवारा मर जाओ और नहीं कुंवारी मर जाओ। शादी बनाना है उसी से बनाओ जिससे दिल लग गया है। दोस्तों एक और ओल्ड एंड गोल्ड की ओर हम चलते हैं, और ये है सुरहरी दार गर्दन कोयल सी है आवाज, और ये है सैरा भानु राजेंद्र कुमार का। ये फिल्म है पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ गीत है।

और सुराही नार गर्दन कोयल सी है आवाज। और ये ओल्ड एंड गोल्ड के बाद में हम चलते हैं प्यार दिलों की।

मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। मोफी के नाम था हीरो नंबर वन फन 1990 एंड सी फन 90।

बादलों को इसे इश्क में वो रोता था, तब ताज्जुब से कहा तुझको था इश्क लैला, बोला झुंझला के मेरी लैला है महबूब खुदा, नामा से ही सबा पर यही रो रो के कहा मोरा मन हम।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाउंड के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फेटा फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो।

और यहाँ से कुछ मिली जुली पुराने और नए गाने से हम आप लोग को सेवा करते हैं, सेवा करेंगे दोस्तों, और आपको हम यहाँ से खुश करेंगे, और आप जहाँ भी हो हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहो, या गाड़ी में बैठे हुआ होगा, या घर में, या कमरे में, या श्रीनाम देश में, या जहाँ भी हो हमारा रेडियो फाहुन के प्रोग्राम आप लोग बस सुनते रहो, और आपको हम प्यार भरी गाना, पुराने गाने, कुछ नए गाने से हम आपको सेवा करेंगे। अब देखा जाए, कोई बता दे दिल है कहाँ, आपको मालूम है कि आपका दिल कहाँ है। एक द्वैत सॉन्ग की ओर हम जाते हैं, फिल्म के नाम है मैं चुप रहूंगी, और सुनील दत्त मीना कुमारी का ये गाना है हमारे दोस्तों।

0: कहां।
1: कोई बता दे ये दिल है यहाँ और दर्द भी वही होता है दोस्तों, जिसका दिल होता है उसका दर्द भी वही बताते हैं कि कहाँ होता है। और ये फिल्म मैं चुप रहूँगी के ये गाना हमने निकाला है, सुनील और मीना कुमारी का ये फिल्म है दोस्तों। और अपना प्रोग्राम को हम अगला गाना की ओर जाते हैं, मस्त भरी पुराने गाने की ओर हम आप लोग को सुनाएंगे। लता जी और मोहम्मद रफी जी क्या गाया है, शमी कपूर का ये फिल्म प्रोफेसर है और ये गाना मैं चली आप सभी लश्राज के लिए है जो तार करते हैं।

और मैं चली और कहाँ चली, आप तो अपने जानते हैं कि कहाँ चली। और लता जी और मोहम्मद रफी का ये गाना फिल्म प्रोफेसर से हमने निकाला है और इसमें काम किया है शमी कपूर ने ये फिल्म में। दोस्तों और अगला गाना की ओर हम चलते, मस्त भरी गाना हम आप लोग को आज के प्रोग्राम में सुनाएंगे। आप तो जानते हैं दोस्तों पुराने गाने में और कितनी मजा है। कहते हैं कितना हसीन है मौसम, और मौसम कब हसीन होता है जब अगर आप के दिल में कुछ गुनगुनाते हैं, आपके पेट में कुछ खुजली होता है, तब चाहे बारिश के मौसम भी होगा, चाहे जो भी मौसम होगा, लेकिन आपको हसीन जरूर लगेगी। फिल्म आजाद का ये गाना है जो हम आप लोग को अभी सुनाएंगे। दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इस फिल्म में ओल्ड रोमांटिक हिट्स दोस्तों, कितना हसीन है ये मौसम।

अगर जो आप के साथी जो है और वो जो खूबसूरत है तो मौसम की ये खबर हो जाता है, तो मौसम जो भी होगा वो आपको अच्छा लगेगा। फिल्म आज़ाद का ये फिल्म नई 355 तक का दिलीप कुमार मीना कुमारी ने इसमें काम किया है दोस्तों। और हम आगे को बढ़ते हैं, फिल्म तीसरी मंजिल की ओर हम जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाले और जाने कहाँ, इसमें शमी कपूर, हेलन, आशा परेख इसमें काम किया है दोस्तों। रफी जी और आशा भोसले आपको क्या सुनाते हैं, आओ मिलके हम दोनों, हम सब मिलके सुना जाए।

मेरे हम सफ़र हो मेरी हम सफ़र, लता अमोगेश का ये गाना हमने आप लोग के लिए चला दिया है हमारे सुनने वालों। उसके बाद हम चलते हैं मेरे भू मेरे महबूब कयामत होगी, फिल्म के नाम है मिस्टर एक्स इन बॉम्बई, नेहा दीन फिरन सस्ता का ये गाना हम आपके लिए चलाते हैं।

मेरे महबूब कयामत होगी, मिस्टर एक्स बम्बई 1964 किशोर जी आप लोग की सुनाए हैं, और किशोर ने अगर महबूब के बारे में सुनाते हैं तो क्यों नहीं मुकेश और लता के ओर हम बढ़ते हैं, जो भी महबूब मेरे के गाना है पत्थर के सनम 1964 जिसमें मनोज कुमार ने काम किया है दोस्तों।

0: Film पत्थर का सनम, पत्थर के सनम, नई गति 67 गाना का हमने निकाला है, जिसमें मनोज कुमार ने काम किए हैं और मुकेश और लता जी इस गाना को और गाया है दोस्तों। और आगे हम चलते हैं, एक दो और मुकेश के गाना हो जाए, फिल्म यादगार की ओर हम बढ़ते हैं। हमारे प्यारे सुनने वालों,
1: किसी ने आवाज दी और कहा कि मैं भी साथ चलूंगी, दो कदम साथ चले, टेढ़े रास्तों पे साथी का साथ छूट गया, साथ ही लौट जा, मेरा जीवन तपते हुए रेगिस्तान समान है, मेरा पथ बहुत कठिन है, बहुत टेढ़ा है।

जिसे पद पे चला उस पद पे मुझे, मुझे लता जी फिल्म का नाम है, यादगार से इस गाना को हमने निकाल दिया है। हमारे प्यारे सुनने वालों, हम अगला गाना की ओर चलते हैं। मैं जिस दिन भुला दूंगी तेरे प्यार उस दिन क्या होगा, लता और अमित कुमार का ये गाया हुआ ये नंबर हम चलाते हैं।

भाई जिस दिन भुला दूंगी तेरी प्यार, उस दिन ये आंखें क्या होगा सुनने वालों, आपने खुद ही सुना है। हम चलते हैं, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में शमाई है। और ये फिल्म, ये मुकेश जी ये गाना को आपको सुनाएंगे, मुकेश जी का ये गाना है।

दुनिया बनाने वाले क्या तेरी मन में समाई, और ये दुनिया काहे को बनाई। मुकेश जी हम जाते हैं और होल्डर बर्मन के साथ में, और जब हम जमा होगी फिल्म बेताब का ये गाना, नेहत इंद्रियन तख्त का ये सॉन्ग है।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 97.3 FM से 98.3 FM। फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

मेरी सनम है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू। आपको सुनाने वाले हैं मोहम्मद रफी जी।

अभी आप सुन रहे थे टुकड़े हैं मेरे दिल के ए यार तेरे आंसू फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी आ रहे हैं प्रोग्राम में आशा भोसले के साथ में।

अभी आप सुन रहे थे फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी ये रात फिर नहीं आएगी। गादीवाने झूम के फिल्म का नाम है फ्लैट नंबर 9। इसी फिल्म से आपको सुनाने वाले हैं द माइटी मुकेश जी।

अभी आप सुन रहे थे गा दीवाने झूम के, रात की जुल्फे झूम के, मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, ब्लफ मास्टर है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से आप सुनेंगे।

सोचा था प्यार हम ना करेंगे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लफ मास्टर से हमने पेश किए हैं द मायती मुकेश जी की आवाज़ में। लता जी के साथ में मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं और गीत का बोल है दुनिया वालों से दूर चलने वालों से दूर आजा आजा चले कहीं दूर। उजाला है फिल्म का नाम।

अभी आप सुन रहे थे दुनिया वालों से दूर, चलने वालों से दूर, आजा आजा चले, कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है, इस दिल में क्या हुआ है, एक सपना सा जागा है। मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं, फ्रॉम द मूवी परवाना से आप सुनेंगे।

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जागा है। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ और वो ये है कि ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं, ज़मीन वाले मायूस कर सकते हैं मगर आसमां वाला नहीं। चल मेरे दिल लहरा के चल।

चल मेरे दिल लहरा के चल, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी इशारा से, अभी आप सुन रहे थे द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे। मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। फ्रॉम द मूवी परवरिश से हम पेश करते हैं लता जी के साथ में मन्ना दे जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे मस्ती भरा है समा, हम तुम हैं दोनों यहाँ। मन्ना दे जी के साथ में लता जी आपको सुनाने वाले थे। कोई कोई आदमी दीवाना होता है, फ्रॉम द मूवी स्वीट हार्ट से हम पेश करेंगे द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, कदर वो होती है जो किसी के होते हुए हो, और जो किसी के जाने के बाद होता है वो पछतावा होता है।

दमाईती मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे कोई कोई आदमी दीवाना होता है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है। दुनिया का सबसे कीमती तोहफा नेक हम सफ़र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। जो सिर्फ खुशी का मोल करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। फ्रॉम द मूवी मधुमती से आप सुनेंगे

जो सिर्फ किसी का मोलक यानी जो सिर्फ खुशी का मोलक करे वो दोस्त नहीं सौदागर है। नमायती मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी मधु मालती। जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी में यानी जिंदगी की सबसे बड़ी हार किसी की आंखों में आंसू आपकी वजह से, और जिंदगी की सबसे बड़ी जीत किसी की आंखों में आंसू आपके लिए।

द माइटी मुकेश जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी सोता यानी सोसाइटी से, दिल मेरे तू अकेला था तू अकेला है। मुस्कुराहटे झूठी भी हुआ करती है जनाब, मुस्कुराहटे भी झूठी हुआ करती है जनाब, इंसान को देखना नहीं समझना सीखो। मोहम्मद रफ़ी आपको सुनाने वाले हैं ओ मेरे शाह हुआ।

अभी आप सुन रहे थे ओ मेरे शाह खुबा ओ मेरी जाने जनाना, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले थे। टी ना रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से। चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे ना रूठो रूठो ना रूठो ना रूठो मेरी जा, फ्रॉम द मूवी जवान मोहब्बत से अभी हमने पेश किए हैं और आपको सुनाने वाले थे आशा भोसले के साथ में मोहम्मद रफ़ी जी। धड़कन है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मैं तो चला जिधर चले रास्ता।

मैं तो चला जिधर चले रास्ता भी, आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना से हमने पेश किए हैं। जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन में एक सपना सा जगा है, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले हैं। फ्रॉम द मूवी परवाना से हम पेश करते हैं

अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी परवाना, से हमने पेश किए हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले जी की आवाज़ में, जिस दिन से मैंने तुमको देखा है उस दिन से एक सपना सा जागा है। लहरा के आया है झोंका बहार का, मोहम्मद रफ़ी जी के साथ में। लता जी आप

फ्रॉम द मूवी वारिस से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में लहरा के आया है झोंका बहार का। ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे, फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी।

ओ दिलबर जानिए तेरे हैं हम तेरे। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी हसीना मान जाएगी से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं और अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है आशा भोसले और किशोर डा की आवाज़ में आप सुनेंगे दूरियां नज़दीकियां बन गई अजब इश्तफाक है।

दूरियां नजदीकियां बन गई जब इश्तफाक है, आशा भोसले के साथ में किशोरदा आपको सुनाने वाले थे। जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है, मोहम्मद रफ़ी जी आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले ज़रा मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, ज़माने वाले हमें इतना गरीब समझते हैं, ज़माने वाले हमें इतना गरीब क्यों समझते हैं, उनको मालूम नहीं कि हम दर्द की दौलत से मालामाल हैं।

अभी आप सुन रहे थे जवान तुम हो जवान हम है, ये प्यार तुमसे हो गया है। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हम पेश करते हैं यार मेरे मेरी बाहों में आ जा। और ये गीत हम पेश करके हैं खास करके दो व्यक्ति के वास्ते, यानी विद्या जी और संता जी के वास्ते, जबकि ये दोनों प्रोग्राम मिलकर सुन रहे हैं। तो चलिए ये गीत हो जाए उन दोनों के नाम।

मोहम्मद रफी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी जीवन रेखा से हमने पेश किए है यार मेरे मेरी बाहों में आ जा, और ये गीत हमने पेश किए है विद्या जी और शांता जी के वास्ते जबकि ये दोनों प्रोग्राम सुनते हैं। दिल बेकरार सा है

मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे दिल बेकरार सा है। मोहम्मद रफ़ी प्रोग्राम में फिर से आ रहे हैं सुनने वालों, जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो।

अभी आप सुन रहे थे जियाओ जियाओ जिया कुछ बोल दो, गुमराह है फिल्म का नाम। और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले जी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे इन हवाओं में इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकारे, फ्रॉम द मूवी गुमराह से हमने पेश किए हैं। प्रोग्राम में आ रहे हैं मोहम्मद रफ़ी जी और वो आपको सुनाने वाले हैं रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूं।

मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे रंग और नूर की बारात, किसे पेश करूं। नादान है फिल्म का नाम और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जीवन भर ढूंढा जिसको।

का नाम है नादान और इसी फिल्म से हमने पेश किए है जीवन भर ढूंढा जिसको वो प्यार मिला पर नहीं मिला। द माइती मुकेश जी की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। आशा भोसले जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हम पेश करते हैं उलझन सुलझे ना।

अभी आप सुन रहे थे उलझन सुलझे ना, रास्ता मुझे ना, जाऊं कहां मैं, जाऊं कहां, फ्रॉम द मूवी ढूंढ से हमने पेश किया है आशा भोसले जी आपको सुनाने वाले थे। सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है, सबर रखे ना धूप रहती है ना छाव रहती है देर तक। पगला कहीं का है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं तुम मुझे यूं भूला ना पाओगे।

पगला कहीं का है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से हमने पेश किया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में तुम मुझे यूँ भूला ना पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग भी तुम गुनगुनाओगे। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं, जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता। मुकेश जी प्रोग्राम में आ रहे हैं, काश के मेरा कोई सहारा होता।

द माइटी मुकेश जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे काश के मेरा कोई सहारा होता, आज मैं काहे को आवारा होता। प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं सुनने वालों, लेकिन मैं आप सभी से कुछ कहना चाहूँगी और वो ये है, काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं। काश लोग ये समझ जाए कि रिश्ते एक दूसरे की फिक्र करने के लिए होते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं। तेरी नीली नीली आँखों के दिल पे तीर चल गए।

अभी आप सुन रहे थे तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए। लता जी के साथ में मोहम्मद रफी जी आपको सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी जाने अनजाने। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नजर लौट के फिर आएगी। लेकिन ये गीत पेश करने से पहले मैं आप सभी के वास्ते कुछ कहना चाहती हूँ, और वो ये है, खास है वो लोग जो वक्त आने पे वक्त दिया करते हैं। मेरी सनम है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं जाइए आप कहाँ जाएगी ये नज़र लौट के फिर आएगी। और ये खास गीत हम पेश करते हैं शर्ली के वास्ते।

आशा भोसले की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी मेरे सनम से हमने पेश किए हैं। जाइए आप कहाँ जाएगी ये नज़र लौट के फिर आएगी, और ये गीत हमने पेश किए थे शर्ली जी के वास्ते। रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देती, रिश्ते ज़रूरत के हो तो कभी खुशी नहीं देती, और जज्बात के हो तो कभी साथ नहीं छोड़ते। मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुमन कल्याणपुर के साथ, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, और ये गीत हम पेश करते हैं धीरज की तरफ से आरती जी के वास्ते बहुत बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ।

मोहम्मद रफ़ी जी भी आपको सुनाने वाले थे। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जवान होती है, और ये गीत हमने पेश किए हैं ख़ास करके धीरज की तरफ से, आरती जी के वास्ते बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ। खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है, खामोश रहो सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। बाहोशो हवास में दीवाना, मोहम्मद रफ़ी जी प्रोग्राम में आ रहे हैं।

मोहम्मद रफ़ी जी अभी आपको सुनाने वाले थे बाहोशो हवास में दीवाना। इस हिस्से में एक आखिरी गीत हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते, मोहम्मद रफ़ी जी सुमन कल्याणपुर जी मिलकर सुनाते हैं, कह दो जहाँ से कह दो इश्क पर जोर नहीं।